तू क्यों होत उदास, कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा, हो ही जाता है भाई। यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे। यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है? यही तो है। संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती? यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं, दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं, आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। पर दोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते। आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्ति की रीत। व्यास जी कह रहे, बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए। यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले, भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो, जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, इस संसार इसीलिए रचा है। सीखिए, समझिए, चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे, अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए, स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही जीवन है। इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा, एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा, कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई।
एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर्मन को दूषित कर बैठता है। वो आवश्यकता से अधिक चाहता है, और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल बिहार की करे बिचारे तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाति को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रूपदास जी कहने उनका संग करे, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करे, वार्ता करे, चिंतन करे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाति को परस सुना करे। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, ना अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही, वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये लेने, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों,
बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। टाका माका कहने लगे प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दूर घर खाई। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करे तहां आचार करे, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करे तो शुद्धता का ध्यान रखे, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है, और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजु को लागो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास ना धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन।

मैंने रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एकादश स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करें। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते हैं। श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है, भोर भये ते सांझ ढरे तक सेवा कोही नेम हमारो। प्रिया जी की जो टहल है जो सेवा है ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। श्री जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर होए जाई, यही मैं आपसे कह रहा था, बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है,

ना हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विदित तो है अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का

0: शीतल हूँ।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते हैं, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता है, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। रघुराज जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे, पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करते है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो, नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। देवदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया, वो जल गया कहां, सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? मैंने वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो दुर्दास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल बालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे हैं ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में न आवे कह रहे तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गोसाई कृष्णदास जी को पद साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं घट को नाही। दुर्दास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की ही लीला अनेक प्रकार की है, द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, ब्रज लीला है, उसमें भी सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, माधुर्य लीला है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई जहाँ जहाँ जाको मन लागे है ते सब नीके हैं, सब भले हैं, घट को नाही। कभी भी अपने मन में भावना है कि हम श्रेष्ठ भजन करते हैं, जो प्रभु का भजन करता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

0: जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी के विचार।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अलग अलग लोगों से अलग अलग बात सुनेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा बनाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें? कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। नीति आयोग भी कहता है कि 2030 तक आते आते $1 trillion का ये बिजनेस होने वाला है और जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मैक्सिमम लोग, आपको पुराने लोगों से मिलिए तो बोलेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। कुछ और लोगों से मिलिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक्स में लगाइए, बॉन्ड्स में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये आपको बेस्ट रिटर्न देते हैं। कुछ लोग और आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, इंश्योरेंस में नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। आज से 60 साल पहले गोल्ड इतने का था, आज इतने का है, उस समय लिया होता तो आज रईस होते। कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। आखिरी में कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत शानदार बात आपसे करेंगे, वो कहेंगे सब छोड़ दीजिए, सब बेकार की बात है, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एजुकेशन विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। हाँ बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से आपको बेस्ट रिटर्न मिलते हैं। साथियों, आज मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आपको बता देना चाहता हूं कि कहां इन्वेस्टमेंट आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देता है। मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो धमाकेदार बात है। वो बात आपको बताएगी कि कैसे गरीब इंसान अमीर हो सकता है, कैसे कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं, कैसे कुछ लोगों ने जिंदगी में वो फतेह हासिल की है जो बहुत सारे लोगों के लिए महज एक सपना है। मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं कि कहां निवेश करना चाहिए। सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पे भी बात करूंगा, कहां इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न देती है। मैं बताता हूं, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। खुद के अंदर निवेश करें, अपने अंदर इन्वेस्टिंग कहां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना स्टॉक, ना बॉन्ड्स, ना प्रॉपर्टीज, ना चिल्ड्रन एजुकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की बेहद आवश्यकता है। इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, योर स्किल्स विल गिव यू द कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अगर आप ये जानते हैं पर कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते, अगर आप जानते हैं और कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। और आखिरी में, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, सबसे बड़ा वेपन चलाते हैं, जानते हैं क्या लिखता हूं, ये सब किस्मत का खेल है भाई, सब किस्मत का खेल है। वो रईस बन गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। देखो सोनू शर्मा को 10वीं में मात्र 50% नंबर थे, क्या जबरदस्त नोट छाप रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन कोचेस व्हाइल अनसक्सेसफुल पीपल नोज एवरीथिंग। हमें सब पता है, नहीं चलता, अब हमने दुनिया देखी है, यह भी नहीं चलता। आपका तजुर्बा आपको जहां तक ला सकता था ले आया, आगे का सफर आपके तजुर्बे से नहीं, नॉलेज से होगा। आज का वीडियो आखिरी तक देखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए यह 12-15 मिनट का वीडियो काफी है। आज मैं आपको वो 5 सफल सिद्धांत बता रहा हूं जिन्होंने कुछ लोगों को शीर्ष तक पहुंचाया। ऐसी पिटारा आपके सामने आज खोलने वाला हूं जो ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। आज की वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ सुपर सेट हो सकती है। 5 सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या करने से सफलता मिलती है। प्रिंसिपल नंबर वन बहुत शानदार है। क्या? नंबर 1, स्टार्ट योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइस, बहुत सफल सिद्धांत मैं आज आपको दे रहा हूं। स्टार्ट योर करियर सुपर अर्ली, जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कर डालिए। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 11 साल की उम्र में चालू किया, पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 साल की उम्र में की, दुनिया के टॉप 5 रईस लोगों में से हैं। इसमें भी वो एक बात कहते हैं कि मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था। जानते हैं मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है, मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, धूप लग जाएगी, सर्दी में जाएगा तो जुकाम लग जाएगा, अभी उम्र बड़ी छोटी है, खेलने खालने की उम्र है, ऐसी बातें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास कर देती है। सफल लोग जल्दी शुरू करते हैं। वर्जिन अटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में चालू किया। जानते हैं दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर महज 12 साल की उम्र में बेच दिया, और हमारे यहां 12-13 साल की उम्र खेलने खालने की उम्र होती है, जिस उम्र में दुनिया के दिग्गज लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। मैं आपको ये प्रिंसिपल देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड इफ यू आर अ टीनेजर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय अभी शुरू होता है अगर आपकी उम्र 16-17 साल है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 5-8 साल लगेंगे। अगर आज आप 17 साल में हैं, 8 साल और जोड़ लीजिए, 25 साल में आप एक सफल इंसान होंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिले। प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बता देना चाहता हूं, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। फेल हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है, फेल क्विकली, जल्दी फेल होइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कीप मूविंग, बढ़ते रहिए। मैं आपको एक सबसे अच्छी बात आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग अर्ली बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 100% फेल होने वाले हैं। अरे आप बोलेंगे सोनू सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस दुनिया की, आप 100% फेल होने वाले हैं, सच है, क्योंकि आपने यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दी। अभी आपके पास ना स्किल है ना मार्केट का नॉलेज है, हो सकता है कोई मेंटोर भी ना हो जो आपको बचा सके। स्क्रैच से करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, क्या? जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कर लो, इस उम्र में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो करो और कन्वर्ट करो उसको एक्शन के अंदर। जब आप मार्केट में चैलेंज फेस करो तो मान लो कि मार्केट आपका टेस्ट दे रही है, डरना मना है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, फेल हो जाइए, जल्दी फेल होइए, बट कीप मूविंग। तीसरा सफल सिद्धांत आपको देता हूं, एजुकेट योर सेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी मिलेनियर एंड बिलेनियर, एजुकेट योर सेल्फ, निरंतर सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए सफल लोगों की, एनालाइज कीजिए बाकी लोगों के बिजनेस। और जानते हैं मजे की बात क्या है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत चीपर है या एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस वीडियो को देखने का, फोकट में देख रहे हैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे सफल बढ़िया ज्ञान फोकट में मिल जाता है दोस्त, बस अफसोस है कि हम सीखते नहीं है। 300 से ज्यादा वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, जरूर सब्सक्राइब करिए, 300 से ज्यादा फ्री वीडियो जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं एजुकेट योर सेल्फ, सीखिए, केस स्टडी से सीखिए, सफल लोगों की जीवनी से सीखिए, और सारा का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी जिंदगी में लगाइए, जहां मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस आज आपके यूट्यूब के अंदर है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपन सफल हुए। इफ यू वॉन्ट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है, मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है, क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली, एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स रिकॉर्डिंग्स, हर चीज जो आपकी स्किल को बिल्ड करे। और जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे ना, उतने ज्यादा समय तक उन स्किल्स को यूज कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे उतने ज्यादा समय तक स्किल्स को यूज कर सकते हो। कार अगर आपने 18 साल की उम्र में सीख ली और आप 80 साल जीते हैं तो 62 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कार 60 साल की उम्र में सीखी और 80 साल तक जिए तो उसका फायदा सिर्फ 20 साल उठा सकते हैं। बिकम अ सेल्फ लर्नर, लर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू टॉक, हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, सीखिए और आगे बढ़िए। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको बता देना चाहता हूं, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको ये डेंट करने वाला है, आपको चोट देगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा कि सोनू सर आज क्या बताने के मूड में आए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, सैक्रिफाइस सोशल लाइफ। यस बॉयज एंड गर्ल्स, सैक्रिफाइस सोशल लाइफ। अपनी सोशल लाइफ को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। गुर्बत और गरीबी से निजात पाने के लिए कीमत आपको देनी ही पड़ेगी, यह कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जिसका सबसे ज्यादा फ्यूल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लग जाता है। आपकी जो शुरुआती साल हैं उसमें आपको सोशल लाइफ को बायकॉट करना पड़ेगा। जी हां, 40 घंटा अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही काम करते हैं तो यह सिर्फ आपके खाने की पूर्ति करेगा, आपके बिलों का भुगतान करेगा, दैट्स इट। अगर आप 40 आवर्स अ वीक मेहनत करते हैं तो सिर्फ बिल भुगतेंगे आपके, आप एक आम जिंदगी जिएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स 40 से बढ़कर 100 हो जाते हैं, अगर एक हफ्ते में आप 100 घंटा काम करते हैं, यह आपको लाइफस्टाइल देगा, ये आपको जबरदस्त लाइफ देगा और आपको एक अमीर लाइफ को फील करवाएगा अगर आप 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन 100 घंटे काम कब करेंगे? जब सोशल लाइफ को बायकॉट करेंगे। कोई फालतू की दोस्ती नहीं, फालतू की रिश्तेदारी नहीं, कहीं फालतू का आना नहीं, फालतू का जाना नहीं, इधर उधर की गॉसिप में खोपड़ी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने करियर और अपने गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि ये कीमत ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप भी बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे रोजाना अपने मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी की तैसी कराकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7-7 8-8 घंटे के आवर्स हैं, कैन यू बिलीव इट। दुनिया भर का अनप्रोडक्टिव काम लोग बाग करते हैं, कभी इसकी शादी में जाना है, कभी उसके रिश्तेदारी में जाना है, कभी फालतू फंड का गॉसिप करना है, चार दोस्त बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। 24 घंटे खत्म होने के बाद, वो 24 घंटे दुनिया भर की संपदा देने के बाद भी आपके पास नहीं आते। आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा सोशल लाइफ और फोकस करना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। पांचवी सबसे खतरनाक चीज, सराउंड योर सेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। अपना वातावरण सफल लोगों के साथ बनाइए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपके आजू बाजू में वो लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें। कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए, कुछ ऐसी एसोसिएशन तलाशिए जहां पर आपके आजू बाजू के लोग बड़ी बात करने वाले हों, बड़े सपने देखने वाले हों, बड़े आइडियाज हों जिनके पास, और अर्ली बिगिनर्स हों जिनके पास गीता ज्ञान के नाम पर कुछ ना हो लेकिन एनर्जी सुपर फास्ट हो। इन सबकी एसोसिएशन में आप कमाल कर जाएंगे। बींग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर एंड बींग विद अ लूजर विल मेक यू अ लूजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 5 प्रिंसिपल अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर गए, मैं दावा दे सकता हूं ये साल आपकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत साल हो सकता है।

0: रॉकी भाई जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो फॉलो करो KGF हेल्थ टिप्स
1: कोलार गोल्ड फील्ड।
0: नहीं, KGF मतलब कीप जिमिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी।
1: ऐसे ही सिनेमैटिक हेल्थ टिप्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

एक शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का, और अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो 41 डिग्री जाने वाला है। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 27 है और विंड स्पीड आपको मिलने वाली है 18। ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 12% है और बेसिकली डे होने वाला है सनी सनी, यानी कि अच्छी खासी धूप अच्छी खासी गर्मी आज आपको मिलने वाली है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ, इस गर्मी भरे मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा और साथ ही सुनते रहेगा रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो गई और आने वाले टाइम पर तो ना गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो भाई ऐसे में क्या करना है, ऐसे में गर्मी में हार्ट हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है आपको। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूं आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहां आज मैं आयुर्वेदिक फिटनेस वाले फंडे के साथ। और अगर गर्मी की बात करें ना, तो सिर्फ गर्मी नहीं बॉडी के सिग्नल को भी समझना जरूरी है। यानी अगर गर्मियों की बात करें ना, तो हमें लगता है कि पसीना और थकान ना बहुत कॉमन है, बिकॉज मौसम ऐसा है, तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे मौसम में ना थका थका फील होना बहुत ही कॉमन है। लेकिन आपको पता है कभी कभी ये साइन ना बहुत ज्यादा डीपर होता है, यानी कि एक डीपर प्रॉब्लम की तरफ हमें इशारा कर रहे होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे साइंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि बॉडी में क्या होता है जब आपको बहुत ज्यादा पसीना या फिर थकान महसूस हो। सबसे पहले तो एक्सेस स्वेटिंग एक साइन है डिहाइड्रेशन का। एंड सेकेंड थिंग, आपका ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हो सकता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आपको लगे ना कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ गर्मी की वजह से है। और इतना ही नहीं, जब बहुत ज्यादा पसीना आपको आता है, बहुत ज्यादा थकान आपको फील होती है ना, तो ये साइन हो सकता है कि आपके हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इन दिनों। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इस बात का। और साथ ही हार्ट बीट में जब आपको चेंज फील होना, तो आपको जरूर एक बार डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत है। बेसिकली कुछ साइन है जो हमें अक्सर बहुत कॉमन लगते हैं, लेकिन अगर टाइम पर ध्यान दिया जाए तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। सो जब भी कुछ ऐसे साइन होते हैं ना, तो लोग अक्सर समझते हैं कि नॉर्मल हीट इफेक्ट है, लेकिन इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये रिस्की हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको करना क्या है, डॉक्टर को विजिट करने से पहले सबसे पहले आप कर सकते हैं पानी और फ्लूइड सबसे ज्यादा लेना शुरू कर दें। साथ ही डायरेक्ट धूप से बचें। जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा हीट वेव्स का टाइम है, तो बाहर जाना अवॉइड करें पूरी तरह से। और इतना ही नहीं, लाइट और हेल्दी फूड खाएं, सो दैट कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। और साथ ही बॉडी के अनयूजुअल जितने भी सिग्नल्स है ना, उन्हें कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। तुरंत डॉक्टर को विजिट कीजिएगा, गर्मी को लाइटली मत लीजिएगा, हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय बाय।
2: लाइफ ऑन व्हील्स, जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
3: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
2: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

और ख्याल है आपके इस बेहतर हाल चाल को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने ही तो मैं यहाँ आती हूँ इस शानदार से ट्रैक के साथ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा मॉर्निंग एक्सप्रेस। अच्छा पहले तो ये बताइए कि रात को नींद पूरी हुई या नहीं। आई नो आधे से ज्यादा लोग ऐसे है जो पूरी नींद लेने के बाद भी ना सुबह थका थका सा फील करते हैं, सुबह बेड छोड़ने का मन ही नहीं करता, फिर चाहे अलार्म कितना बजता रहे बस उसे 5 मिनट बोल बोल के स्नूज मोड पर डाल देते हैं। तो अगर आप भी कुछ इस तरह फील कर रहे हैं ना इन दिनों, तो आपको बता दूं कि आपको हो रहा है डिसेनिया की प्रॉब्लम। और अगर डिसेनिया की मैं बात करूं तो ये लेजीनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। कहीं आपको लगे कि आज आप एलसी फील कर रहे हैं तो भाई इस वजह से सारी चीजें हुई, नहीं, एक्सपर्ट्स कुछ और कहते हैं। एंड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये अक्सर आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस, इवन बर्न आउट या फिर डिजास्टर्ड स्लीप साइकिल से लिंक्ड होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी आपकी बॉडी रेस्ट ले चुकी होती है पूरी तरह से, फिर भी ना आपका माइंड थका हुआ रहता है। आपको रहता है कि बस और कुछ काम नहीं करना, बेड पर सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है। तो भाई मैं पहले ही बता दूं आपको, अगर बहुत लंबे टाइम तक आपको ऐसी फीलिंग हो रही है या फिर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा थकान फील कर रहे हो इन दिनों, तो ये मेंटल हेल्थ का सिग्नल हो सकता है। तो भाई प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, भाई अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, अपनी नींद पर ध्यान दीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे तो स्ट्रेस ही नहीं होता, भाई आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है एंड स्ट्रेस को मैनेज करना तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पर। तो भाई अगर आपको लगता है ना बहुत ज्यादा बिजी हैं आप, कभी टाइम ही नहीं मिल रहा आपको, तो भाई बिजी आप हमेशा रहेंगे, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो वीकेंड आएगा ना, इस वीकेंड में आप अपने लिए एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो स्ट्रेस है ना वो दूर भाग जाए भले ही कुछ समय के लिए, ताकि आप इस फीलिंग से थोड़े देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाइए। और बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी सेल्फ केयर पर जरूर ध्यान दीजिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात करते हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हाँ?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो। जैसी
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

बेल इंट्रोड्यूस, यानी कि स्कूल्स के लिए एक नया थॉटफुल स्टेप ले लिया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। हर स्कूल्स के अंदर 45 टू 60 मिनट्स के अंदर एक बेल रिंग होगी, जिसका एक मोटिव रहेगा कि बच्चे फटाफट से पानी पी लें, सो दैट कि बच्चों को बेल बजते ही याद आ जाए कि अब पानी पीने का समय हो गया है। और अगर इसके मोटिव की बात करें ना, तो इसका सिंपल सा मोटिव है कि डिहाइड्रेशन से बच्चों को बचाना है। बिकॉज अगर गर्मी की बात करें, एक्सट्रीम हीट में डिहाइड्रेशन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर बच्चों की बात की जाए, खासकर बच्चे अक्सर पढ़ाई में पानी पीना भूल जाते हैं, ऐसे में अगर इस तरह की बेल रिंग होगी ना, तो उन्हें एक्साइटमेंट भी होगी कि अच्छा पानी पीना है, और इस तरह से उनका हाइड्रेशन भी पूरा हो पाएगा और उनको किसी भी तरह का फटीक नहीं होगा, कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा। तो भाई बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है। तो भाई एक मैसेज भी है, हाइड्रेशन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। सो यही कहना चाहूंगी, ये स्टेप सिंपल है लेकिन बच्चों की हेल्थ के लिए काफी इम्पैक्टफुल है। सो माई डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, आप भी इस चीज का ध्यान रखें, पहले पानी फिर पढ़ाई। और इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट्स। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: आज शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कई बार ना हम लोग इतना ज्यादा शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि खुद का नुकसान करा लेते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई जिस शॉर्टकट की मैं बात कर रही थी वो है शॉर्टकट से जॉब मिलेगी और बस इसी के चलते ना आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। दरअसल एक शॉकिंग केस फिर से आ गया। एक फ्रॉडस्टर ने खुद को मिनिस्ट्री से कनेक्टेड बताकर लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाने का प्रॉमिस करके उनके अच्छे खासे पैसे ठग लिए। अगर इस फ्रॉड की बात करूं, बेसिकली इस फ्रॉड में होता क्या है, सबसे पहले तो आपसे फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि आपकी जॉब पक्की है, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड थिंग, आपको ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि अब तो आपकी जॉब लग ही जाएगी। एंड साथ ही आपको ट्रस्ट दिलाकर लाखों रुपए आपसे ले लिए जाते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर फ्रॉड की मैं बात करूं तो अब तक 40 लाख रुपए तक का स्कैम हो गया है लोगों को फेक प्रॉमिसेस करके। अब आप सोच रहे हैं कि पता कैसे लगाए क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आइए जानते हैं कि किस तरह से आपको इस फ्रॉड में फंसाया जा सकता है। पहले तो फ्रॉडस्टर आप तक आएगा, आपको गवर्नमेंट कनेक्शन के नाम पर बहुत सारे स्टोरीज बताएगा, बहुत सारे इंसिडेंट्स बताएगा जहां पर वो आपका ट्रस्ट जीत लेगा। साथ ही आपके साथ एक अर्जेंसी क्रिएट की जाएगी सो दैट कि आप सोच ना सके ना समझ सके कि ये एक्चुअल में फ्रॉड है या जेन्युइन सोर्स है। फेक पेपर्स आपको दिखाए जाएंगे, आपका ट्रस्ट जीत लिया जाएगा। तो इस तरह की फ्रॉड से बेसिकली आपको बचना कैसे है? किसी भी जॉब के लिए पैसे ना दें, क्योंकि कोई भी जॉब वैकेंसी आपसे पैसे नहीं लेती है। एंड सेकंड थिंग, ऑफिशियल वेबसाइट और प्रोसेस पर ट्रस्ट जरूर करें। डॉक्यूमेंट्स और ऑफर्स वेरीफाई जरूर करना, साथ ही टू गुड टू बी ट्रू ऑफर से सावधान रहें, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज आपको ये इस तरह की प्रोमिसेस नहीं करती है कि आप उन्हें पैसे देंगे तभी आपको जॉब मिलेगी। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत वाली जॉब ही सेफ होती है, शॉर्टकट वाली जॉब नहीं। सो शॉर्टकट को साइड कर दीजिए और अपने अकाउंट के साथ किसी भी तरह का रिस्क ना लीजिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

माची सटक सटक बम तेरा गुते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कमोन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा, पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker.
1: हार्ट बीट

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। और भाई बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करती हूँ, लेकिन आज जो मैंने चीज नोटिस किया ना, आज हम बात करने वाले उस चीज के बारे में। अभी आपने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे होंगे पहले की जनरेशन में और ये अब की जनरेशन में, जिन्हें कहा जाता है 90s vs 20s की जो जनरेशन है भाई, बहुत ही ज्यादा अलग है। हमारी अगर मैं बात करूँ तो हमारे टाइम पर, यानी कि अभी मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भाई मेरे बचपन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास टॉयज ज्यादा होते थे, मोबाइल होता ही नहीं था। लेकिन आजकल ना बच्चों के हाथ में मोबाइल ही देखने को मिलता है, खिलौने दूर दूर तक देखने को मिलते ही नहीं है। एंड इसके ऊपर एक रिसर्च की गई और रिसर्च में यह आया है कि ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल हो रहा है। भाई जितने भी बच्चे हैं उनका फोकस धीरे धीरे खत्म होता जाए। और फिर अगर इससे रिलेटेड स्टडी की मैं बात करूँ तो बार बार स्क्रोलिंग करना, नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन देखना, साथ ही रील्स और शॉर्ट्स का एडिक्शन आजकल हर एक बच्चे को है, और ये सब मिलकर ना एक बीमारी बनाते हैं, यानी कि बच्चों में इंटेंशन और ADHD जैसे सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करें कि आपके बच्चे फोन तभी इस्तेमाल करें जब बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज आप ही उनकी हेल्प करें, उनका होमवर्क, उनके असाइनमेंट कंप्लीट कराने। बिकॉज आजकल के बच्चों ना यही एक्सक्यूज देते हैं कि असाइनमेंट है और फोन तो चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता जो ये फोन चलाने के आते थे उन्हें कितना डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो भाई एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर वार्न कर रहे हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि ये बच्चों के दिमाग के फोकस सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ फोकस करना है और कहाँ टाइम पास करना है। तो भाई जितने भी पेरेंट्स और जितने भी टीचर्स आज हमें सुन रहे हैं, बस यही कहना चाहूंगी कि आपके लिए वेकअप कॉल है, अभी उठ जाइए, फटाफट से इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन टाइम लिमिट कर दीजिए अपने बच्चों के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंक्लूड कर दीजिए सो दैट कि बच्चे बाहर जाकर खेले, कल एक्टिव रखे। तो बस यही कहना चाहूंगी कि ध्यान दीजिए इन सारी चीजों को। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तो एंजॉय कीजिए पास्ट ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। मैं तो सुन के जाओ। हेलो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों,
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये, सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

इस शानदार ट्रैक के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ मैं अक्सर आपको ये बोलती हूँ कि सोशल मीडिया जितना आपको लगता है ना कि ये आपका दोस्त है, उतना ही ये आपको स्कैम का शिकार बनाने में मदद करता है। अभी दरअसल हाल ही में एक ऐसा केस हुआ जहां पर ये देखा गया कि सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद बैंगलोर के एक शख्स को अपने गंवाने पड़े 65 लाख रुपए। तो भाई यही बोलना चाहूंगी कि अगर दोस्ती करनी है तो असल जिंदगी में जाकर दोस्त बनाइए, क्योंकि वो दोस्ती ना तो शायद जेन्युइन हो सकती है, लेकिन ये जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर दोस्ती करते हैं ना, इस दोस्ती का कोई भी भरोसा नहीं है भाई। ये कभी भी आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। एंड बार बार मैं आपको बताती भी हूँ कि अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें, अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। और सोशल मीडिया वर्चुअल वर्ल्ड है, वहाँ पर सारी चीजें रियल लाइफ में जो है बताने की जरूरत वैसे भी नहीं है। तो बस इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। और बस यही आपके लिए एक रिमाइंडर लेकर आई थी कि जब भी कभी अगर दोस्ती करने जा रहे हैं तो सारी चीजों को सोच समझ कर ध्यान में रखते हुए उस इंसान से दोस्ती कीजिएगा, और उतनी ही

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजी अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
4: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
5: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी। 89.6 FM कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है. पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है. मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा. तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
5: हर घर सूर्य घर.
6: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है, पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
7: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो, रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
8: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यह दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं पिछले एक दो दिन थोड़ा बारिश की बौछारों ने मौसम को थोड़ा अच्छा बना दिया। जी हाँ, मौसम ने बदला रुख, अगले कुछ दिन तक ठंडी हवाओं के आसार भी। लगभग 10 डिग्री तक तापमान गिरता नजर आया है और कल की नहीं बात की जाए 22 से 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया, जब 5 दिन पहले तक ये 30 डिग्री के पार तक था। अब बात की जा रही है कि आज कल परसों तक के दिन में भी बारिश के ही आसार है, बारिश बेशक ना हो लेकिन कुछ दिन तक मौसम थोड़ा ठंडा रहने वाला है, जिससे कि एक वही भी कंट्रोल एक कंट्रोल हुआ, जो अच्छी बात है, जहाँ एक वही 130 तक पहुंच गया, ये मेंटेन रहे। जहाँ मौसम ने हमारा साथ दिया, कुछ साथ हमारा देना भी बनता है कि हम लोग कारपूल करें, गार्बेज ना जलाएं, पास गार्डन सोसाइटीज में वाटर पॉगिंग करें। बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले कॉल रखा।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहां बात करते हैं दोस्तों, कुरुक्षेत्र में फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने मेडल्स जीते। कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम में 16th हरियाणा सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई और ये चैंपियनशिप 30 और 31 तारीख को हुई थी, जिसमें फरीदाबाद शहर के खिलाड़ियों ने 400 मीटर दौड़ में विक्रांत पांचाल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और 1500 मीटर दौड़ में पलवल के खिलाड़ी ने मेडल अपने नाम किया। बात की जाए तो काफ़ी मेडल्स अपने नाम लेकर के आए फरीदाबाद शहर के खिलाड़ी, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस है। जहां इस बार फरीदाबाद शहर का नाम स्टेट में रोशन किया है, तो अगली बार स्टेट का नाम देश में रोशन करें और उससे अगली बार देश का नाम पूरी दुनिया में। हमारे शहर के खिलाड़ी यूँ ही खेलते रहें, सबको ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले का और खूबसूरत सा ट्रैक। Oh, my God.

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। ये हम बात करते हैं दोस्तों बेंगलुरु में 3 दिन की पैरा इंटरनेशनल एथलीट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज जहां 4 ग्लव थ्रो के खिलाड़ी ने वहां पे तिरंगा लहराया। जी हाँ, नंबर 1 खिलाड़ी बनते नजर आए हमारे शहर के प्रणव सूरमा, सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अब बात करें तो क्लब थ्रो में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में। डिस्क थ्रो और क्लब थ्रो दोनों खिलाड़ियों में वर्ल्ड के 4400 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। इन बीच प्रणव ने क्लब थ्रो में 34.4 मीटर की दूरी तय कर गोल्ड मेडल कब्जा जमाया। वहीं डिस्क थ्रो में भी उन्होंने 11.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल, गोल्ड और सिल्वर लेकर क्या है। और इससे दोहरे मेडल के साथ प्रणव सूरमा ने वर्ल्ड रैंकिंग में भी बड़ा फेरबदल किया। अब वो क्लब थ्रो में दुनिया के नंबर 1 और डिस्क थ्रो में दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं। कांग्रेचुलेशंस है जहां पूरे देश दुनिया में शहर का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते आए प्रणव सूरमा को। पहले भी काफी मेडल्स जीते हैं, बाकी ऐसी भी चर्चा होती रही। उससे पहले एक और ट्रैक

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
5: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
6: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
5: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
7: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
8: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हूँ रेडियो महारानी से मैं हूँ आरजे बॉन्ड और इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं मौलिक यहाँ ढेरों बातें चर्चाएं फिल्मी कलियारे से फिल्मी पिटारे से आप सबके लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ आज बात करेंगे कुछ ऐसे टीवी स्टार्स के बारे में जो कि टीवी से निकल के बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा और छा गए, और कुछ बॉलीवुड के ऐसे गुमनाम चेहरे जिन्होंने ओटीटी पर मचाया धमाल और अपनी फैन फॉलोइंग में करी बढ़ोतरी। और वहीं बात करेंगे टीवी के कुछ ऐसे विलन्स के बारे में जिनकी चर्चाएं भैया इतनी खूब होती हैं कि उनके एक एक डायलॉग को फैंस बहुत ज्यादा पसंद किया करते हैं, और वही 90 के दशक के कुछ ऐसे कॉमेडी शो जिनको आज भी देखना हर कोई पसंद करता है। तो बॉलीवुड के गलियारे से बॉलीवुड के पिटारे जैसी और भी ढेरों चर्चाएं आप सबके लिए लेकर के आऊंगा कुछ अपकमिंग स्टार्स के बारे में, तो कुछ आने वाली बेहतरीन कहानियों के बारे में, कुछ नई जोड़ियां दिखेंगी सिल्वर स्क्रीन पर, तो इसी के साथ साथ कुछ फ्रेंचाइज की अगली किश्त बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि बॉलीवुड का पिटारा खोलने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके, और ज्यादा ये खूबसूरत सा गाना आप सभी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

द मूवी रंग दे बसंती, और इसी के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं, देखिए वक्त के साथ साथ कॉमेडी का अंदाज भी बदल गया। अब डार्क कॉमेडी करना एक कूल बात मानी जाती है, लेकिन सच्चाई है कि आज भी लोग टीन कॉमेडी देखना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कॉमेडी लोगों को भाती है जैसी 90 के दशक के कॉमेडी सीरियल्स छा जाया करते थे, और आज भी उन सीरियल्स को देखना लोग पसंद करते हैं। तो इसी कड़ी में अगर बात करूं, देखिए कॉमेडी स्टैंड अप शो के नाम पर आजकल बहुत सारे स्टार्स छाए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही 90 के दशक के में किरदारों की और टीवी शोज की बात करूं जिनको लोग बहुत ज्यादा प्यार दिया करते थे, तो सबसे पहले बात करता हूं देख भाई देख, एक कॉमेडी शो जहां दीवान परिवार के तीन पीढ़ियों की कहानी कहता नजर आता है, जिसमें शेखर कपूर, फरीदा जलाल, सुषमा सेठ, अमर उपाध्याय जैसे स्टार्स नजर आए, और इस टीवी शो से शुरुआत करके फिर कैसी अच्छा खासा प्यार बटोरा और लोगों कितना हंसाया आप सब जानते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम पांच के बारे में। इस कॉमेडी शो में आनंद माथुर और उसकी पांच बेटियों की कहानी दिखाई गई, जहां मीनाक्षी, राधिका, स्वीटी, काजल और छोटी नाम की पांच बेटियां हैं, और हर बेटी का अंदाज हरकतें ऐसी है कि दर्शक लोटपोट हो जाते हैं। इस सीरियल में एक समय में विद्या बालन भी नजर आई थी, और इस किरदार को, इस सीरियल को लोगों ने बहुत पसंद किया। और इसके बाद बात करते हैं एक और बहुत बढ़िया कहानी के बारे में, जबान संभाल के। ये कॉमेडी शो एक ब्रिटिश शो माइंड योर लैंग्वेज का हिंदी वर्जन बनाया गया। इसमें पंकज कपूर ने एक लैंग्वेज टीचर का किरदार निभाया। इस सीरियल में हिंदी भाषा सीखने के कई लोग आते हैं, और इनकी बातचीत के जरिए ही हंसी का माहौल बन जाता है। देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा, देखिए अगर आज की किड्स की बात की तो बिल्कुल ये कॉमेडी शो देखिए, आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। फिर बात करता हूँ श्रीमान श्रीमती। आज कपिल शर्मा शो पर अर्चना पूरन सिंह जज की कुर्सी पर बैठकर खूब हंसती हैं, लेकिन 90 के दशक में अर्चना पूरन सिंह ने श्रीमान श्रीमती सीरियल के जरिए दर्शकों को खूब हंसाया भी है। इस सीरियल में दो अलग अलग शादीशुदा जोड़ों की कहानी है, ये आपस में पड़ोसी हैं, और पड़ोसियों की नोकझोंक किस फनी तरीके से बाहर आती है ये भैया श्रीमान श्रीमती सीरियल को देखने वाले अच्छे से जानते हैं। अब जाते थे, एक नाम और लेना चाहूंगा, फ्लॉप शो। टीम कॉमेडी करने के लिए जसपाल भट्टी जाने जाते थे, और जसपाल भट्टी बेशक आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी एक कॉमेडी, उनका ये अंदाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उनका एक शो फ्लॉप शो आता था, और ये स्टायर कॉमिक शो था, सिस्टम पॉलिटिक्स समाज सभी पर एक सीरियल कॉमेडी के जरिए कटाक्ष करता था, और इस शो में जसपाल भट्टी के साथ उनकी पत्नी सविता भी नजर आती। तो 90 के दशक के कुछ ऐसे सीरियल जिनको लोग देखना पसंद किया करते थे, और अगर आज भी इनको रिपीट भी देखा जाए तो भैया अपनी हंसी को आप रोक नहीं पाएंगे। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चाएं तो लेकर के आते रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना आप सभी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

मैं एक बार फिर से लौट आया हूँ फिल्मी टॉनिक आरजे मॉनिक लेकर के शो फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों यहाँ बात करते हैं टीवी सीरियल में ज्यादातर महिला किरदारों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। सारी टीवी सीरियल्स में विलन्स के रोल को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती नजर आई है कई किरदारों के जरिए। यहाँ अगर बात करूँ ऐसे खलनायकी का किरदार निभाने वाले कुछ टीवी विलन्स के बारे में, सबसे पहले बात करता हूँ सुरेंद्र पाल सिंह के बारे में। सीरियल शक्तिमान में मुकेश खन्ना ने लीड रोल निभाया था जिसे काफी ज्यादा पसंद भी किया गया और इस सीरियल में शक्तिमान का सामना तमराज किल्विश नाम के

कैरेक्टर के विलन वाले अंदाज को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बेशक नेगेटिव रोल था, लेकिन नेगेटिव रोल को लोगों ने कितने बढ़िया तरीके से सराहा आप जानते ही। अभय दिल था मेरी एक ऐसा किरदार जिसके हर डायलॉग में एक अलग ही अंदाज। कई बार किरदार बेशक किसी को डांट रहा हो, लेकिन उनका डायलॉग इतना धमाकेदार कि कई बार तो हंसी भी छूट जाया करती थी। अब बात करता हूँ साल 2009 में सीरियल प्रतिज्ञा में एक बहुत ही बढ़िया किरदार निभाने वाले अनुपम श्याम जी के बारे में, जिन्होंने ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया। अनुपम श्याम की लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें और बुलंद आवाज ने इस किरदार में एक अलग ही जान डाल दी थी और इससे किरदार को बहुत ज्यादा फेम मिला। कई लोगों का तो ये भी कहना कि प्रतिज्ञा की कहानी कितनी अच्छी है नहीं जानते, लेकिन प्रतिज्ञा सीरियल हम लोग इसलिए देखा करते हैं कि ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार और उनका वह रुतबेदार जो डायलॉग जो बोलते हैं बड़ा पसंद आ। फिर बात करता हूँ सुदेश बेरी के बारे में। टीवी पर अलग अलग तरह के इन्होंने किरदार निभाए, लेकिन साल 2009 में सीरियल अगले जन्म है बिटिया ही कीजो में लोहा सिंह के किरदार में उन्हें अलग ही पहचान दी। लोहा सिंह अपने परिवार की मान मर्यादा को बचाने के लिए किसी को भी परेशान करने से पीछे नहीं रहता था और बस इसी किरदार को और इसी अंदाज को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चा लाता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

इसी खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर में फिल्मी टॉनिक। यहाँ आप दोस्तों बात करते हैं फिल्मों में। देखिए, कई किरदार ऐसे होते हैं जो दर्शकों को ताम्र याद रहते हैं। कई बार तो कलाकार का नाम दर्शक भूल जाते हैं, लेकिन किरदार का नाम कभी नहीं भूलते। और वेब सीरीज की दुनिया में भी कुछ ऐसे ही एक्टर्स हैं जिनके निभाए किरदार ही दर्शकों को याद रहते हैं। बेशक असल नाम भूल गए हो, लेकिन उनके किरदारों का नाम आज भी जबान पर रहता है। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करना चाहूंगा पंचायत वेब सीरीज के प्रहलाद चाचा के बारे में। देखिए, पंचायत के कई सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज में फैजल मलिक ने प्रहलाद चाचा का रोल निभाया। ये किरदार दर्शकों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इनके डायलॉग्स पर मीम्स भी बनना शुरू हो गए। प्रहलाद चाचा रिश्तों की, परिवार की और दोस्ती अहमियत दर्शकों को बताते नजर आते हैं। इस सीरीज में विनोद यानी कि अशोक पाठक और बंदराकस दुर्गेश कुमार के किरदार को भी ऐसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। आगे बात करते हैं गुल्लक की बिट्टू की मम्मी के बारे में। जी हाँ, वेब सीरीज गुल्लक में सुनीता राजवार ने बिट्टू की मम्मी का किरदार निभाया था और बिट्टू की मम्मी इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका में नजर आई। वह आए दिन इस परिवार के घर में चली आती और कुछ ना कुछ खुराफात करती, और इनकी इसी खुराफाती कहानियों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बात करता हूँ इसी एक और बेहतरीन वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री के बारे में। जितेंद्र कुमार कई वेब सीरीज में लीड रोल कर चुके हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्यार मिला कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया के रोल में, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी नाम से उन्हें आज जाना ही जाना है। वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में जितेंद्र कुमार ने एक कोचिंग सेंटर के टीचर का रोल निभाया, जो बच्चों को खूब सपोर्ट करते नजर आते हैं। अब बात करता हूँ भैया एक और बहुत बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में, जिस वेब सीरीज की दीवान लोगों के सर पर चढ़कर बोलती है। वेब सीरीज मिर्जापुर में कालीन भैया की पत्नी बीना का रोल एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने निभाया, और इस सीरीज में ये किरदार काफी दमदार था। इस किरदार रश्मिका दुग्गल के एक्टिंग करियर का बेस्ट और पॉपुलर करेक्टर रहा। तो दोस्तों, ऐसी ही और भी किस्से कहानियां बॉलीवुड के पिटारे से कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप सबके लेकर के आता रहूंगा। लेकिन उससे पहले सुना देता हूँ एक और खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, रहो स्मार्ट, बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

सुनंदा शर्मा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। मैं मॉनिक। देखिए दोस्तों, साउथ से लेकर बॉलीवुड तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन पीरियड वॉर ड्रामा फिल्मों की अगर मैं यहाँ बात करूँ, जो कि लोगों के दिलों पर तो छाई ही छाई, साथ ही साथ सिल्वर स्क्रीन पर भी छाई रही ये कहानियां काफी लंबे वक्त तक। यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ पद्मावत। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म पद्मावत में रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका निभाई थी और ये फिल्म महाराजा रतन सिंह और रानी पद्मावत की कहानी पर बनाई गई है और इस फिल्म के किरदारों को अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी। इसके बाद बात करते हैं एक और बहुत बेहतरीन कहानी, तानाजी द अनसंग वॉरियर, अजय देवगन की ये बहुत बढ़िया फिल्म जिसको 2020 में रिलीज किया गया। ओम राउत ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया। फिल्म में तानाजी मालूसरे के संघर्ष और वीरता को दिखाया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 280 करोड़ की कमाई करके लोगों के दिलों पर छा गई थी। फिर बात करता हूँ बाजीराव मस्तानी, सुशीला भंसाली की एक और बहुत बढ़िया फिल्म बाजीराव मस्तानी, जहाँ रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आए। 2015 में रिलीज की गई ये फिल्म छत्रपति बाजीराव और मस्तानी की कहानी को दिखाया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 185 करोड़ की शानदार कमाई करी थी। ऐसे ही बात करता हूँ पोनियन सेल्वन 1 और 2 के बारे में। पहली कहानी को 2022 में रिलीज किया गया, जहां पे मणिरत्नम ने इस कहानी को डायरेक्ट किया था। विक्रम और ऐश्वर्या राय जैसे दिग्गज स्टार्स नजर आए और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक साम्राज्य चोल वंश पर बनी हुई कहानी ने 266 करोड़ की कमाई करी और जब इसका अगला पार्ट रिलीज किया गया 2023 में, तो इस कहानी ने भी 200 करोड़ का आंकड़ा तो छू ही लिया। तो ऐसी इंडियन पीरियड ड्रामा फिल्म्स को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है और आगे भी फैंस की उम्मीद है कि ऐसी कहानी को और सिल्वर स्क्रीन पर लाया जाए। बाकी ऐसी बातें चर्चा लाता रहूंगा, उससे पहले एक और।

0: ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके पर।
1: ए जय माता जी ने हम कहीं ने कहूँ के वाह फरे वादल फरे ने वायरो फरे पण एक बार बोलिया पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हा।

फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं बहुत सी ऐसी कहानियां जो कि आज के दौर में हाई बजट फिल्म मानी जाती हैं, कोई 500 करोड़ में बनी तो कोई 1000 करोड़ में। लेकिन दोस्तों देखिए, बात करूं 1960 के दौर की, एक ऐसे डायरेक्टर के आसिफ साहब जिस दौर में लगभग कहानियों के बजट की बात की जाए, एक नॉर्मल बजट की बात की जाए तो 20 से 30 लाख और अपर हायर बजट फिल्म रहती थी तो 50 से 60 लाख। लेकिन 1960 के दौर में के आसिफ साहब ने एक कहानी बनाई, जिस कहानी की हम बात करें मुगले आजम, जिस कहानी को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे के आसिफ साहब ने, और उस दौर के सबसे ज्यादा महंगी फिल्मों में से एक फिल्म रही थी 1.5 करोड़ रुपए, जबकि कहानियां 20-30 लाख के बजट में बनती थी और 1 करोड़ का आंकड़ा अपनी कमाई का भी पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन इस कहानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बनी और 11 करोड़ रुपए की कमाई अपने नाम करी, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड रहा था। मुगले आजम कहानी आप सब जानती हैं, जिस हिसाब से उस फिल्म का सेट बनाया गया था उस कहानी को कोई भी नहीं भूल सकता। मुगले आजम की अगर बात की जाए तो देखिए, आज की कलेक्शन के हिसाब से लगभग 1000 करोड़ रुपए कमाए थे मुगले आजम ने उस दौर में, जब प्रमोशन के लिए ना तो कोई यूट्यूब चैनल था और ना ही सोशल मीडिया। तो के आसिफ साहब की हिम्मत की दाद आज भी लोग दिया करते हैं कि भैया उस दौर में इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की हिम्मत उन्होंने जुटाई। और जब फिल्म को रिलीज किया गया तो दिलीप कुमार और मधुबाला के किरदारों को लोगों ने बहुत पसंद किया, मुगले आजम की कहानी को पसंद किया और स्पेशली उसके सेट को जिस हिसाब से बनाया गया था औसम। जैसे बात की जाए आज के दौर में आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, 1960 के दौर में के आसिफ साहब को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के तौर पर जाना जाता था। कई सीन्स तो ऐसे थे जब एक एक सीन को परफेक्ट तरीके से शूट करवाने के लिए 7-7, 8-8 दिन गुजार दिया करते थे के आसिफ साहब, जब तक उन्होंने जिस हिसाब से सोचा है वैसा सीन नहीं शूट हो जाया करता था। तो के आसिफ साहब की बनी एक बहुत बेहतरीन फिल्म मुगले आजम को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और आज भी लोग इस कहानी को जब देखा करते हैं तो सल्यूट किया करते हैं। बॉस इतनी ज्यादा बेहतरीन कहानी आज के दौर में इतनी आसानी से बनाना पॉसिबल नहीं। बाकी ऐसी और वीडियो बातें चर्चा आप सभी लेकर के आता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत आप सभी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

गाना है फ्रॉम द मूवी नमस्ते लंदन और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर बनाने वाले कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ आयुष्मान खुराना। 2004 में रोडीज के विनर रहे और उसके बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया। विक्की डोनर ने कहानी दी और इस कहानी को लोगों ने बहुत प्यार दिया। फिर नोटेबल कहानियों की बात की जाए, अंधाधुन, आर्टिकल 15 और ड्रीम गर्ल जैसी कहानियों में किरदार निभाकर के अच्छा खासा प्यार बटोरा। फिर बात करता हूँ मृणाल ठाकुर के बारे में। 2014 से 16 के बीच में टीवी पर कुमकुम भाग्य में किरदार निभाया और उसके बाद जब बॉलीवुड में डेब्यू किया 2018 की बात थी लव सोनिया से। सुपर 30 जर्सी और सीतारमम जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। फिर बात करता हूँ प्राची देसाई। टीवी शो जिसको 2006 से 8 में रिलीज किया गया कसम से जैसे सीरियल्स के साथ प्यार बटोरा और उसके बाद जब बॉलीवुड में मौका मिला रॉक ऑन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। पहले बात करते हैं एक और जाना माना चेहरा यामी गौतम। चांद के पार चलो ये प्यार ना होगा कम जैसे कहानियों के साथ टीवी शोज में बहुत अच्छा खासा किरदार निभाया। फिर जब बॉलीवुड में उनका डेब्यू हुआ विकेट ओवर कहानी से और उसके बाद उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, OMG 2 जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। ऐसी कुछ और चेहरों की मैं बात करूं, सुशांत सिंह राजपूत बेशक आज हमारे बीच नहीं लेकिन उनके किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। पवित्र रिश्ता से उन्होंने शुरुआत करी थी, फिर बॉलीवुड में डेब्यू किया काय पहुंचे और उसके बाद MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे और केदारनाथ जैसी कहानियों में उनके किरदार को उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा सराहा गया। करण सिंह ग्रोवर दिल में गए 2007 से 2010 के बीच ये शो टीवी पर प्रीमियर हुआ और बॉलीवुड में जब डेब्यू का मौका मिला तो 2015 की बात थी। एलोन से डेब्यू किया और उसके बाद हीट स्टोरी 3 के किरदार को इनको बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत फेम मिला इस किरदार का। वैसे कुछ ऐसे और पुराने चेहरों की अगर मैं और जाऊं तो एक और बहुत बढ़िया स्टार मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुछ विद्या बालन जिन्होंने भी टीवी से ही शुरुआत करी थी और उसके बाद बॉलीवुड में अच्छा खासा प्यार कमाया। SRK की बात करते हैं हम, इन्होंने भी टीवी के एक बहुत बढ़िया सीरियल फौजी और सर्कस से शुरुआत करी और फिर बॉलीवुड डेब्यू किया देवाना से। तो देखिए बहुत ऐसे स्टार जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत करी और आगे बढ़े और आज बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमाते नजर आए। बाकी ऐसी अब ढेरों बातें चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत गाना आप सभी के लिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

फिल्मी जगत वालों को यहाँ बात करते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जो कि बिग स्क्रीन से यानी कि सिल्वर स्क्रीन से बिल्कुल ही गायब हो गए और OTT प्लेटफॉर्म ने उनको एक जबरदस्त कमबैक दिया, एक नई पहचान बनाई। यहाँ कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में मैं बात करने वाला। सबसे पहले बात करूंगा बॉबी देओल। 90s में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी सोल्जर, गुप्त और बादल जैसी कहानियों के साथ, लेकिन काफी टाइम से सिल्वर स्क्रीन पर गायब रहे और कमबैक मिला आश्रम वेब सीरीज से। जिस आश्रम वेब सीरीज में इनको बहुत ज्यादा प्यार मिला और उसके बाद बॉलीवुड में फिर से दिखाई दिए एनिमल की कहानी के साथ। फिर बात करता हूँ मनोज वाजपेयी। अपने करियर की शुरुआत सत्य और शूल जैसी कहानियों के साथ और कुछ वक्त तक सिल्वर स्क्रीन पर नहीं नजर आए, लेकिन जैसी द फैमिली मैन जैसी कहानी इनके नाम इनके हाथ लगी तो इस द फैमिली मैन ने इनको एक अलग ही पहचान दिलाई और OTT में अच्छा खासा रोल निभाया इनके कमबैक के लिए। अब बात करते रहना है तेरे दिल में। वैसे इस कहानी का नाम लेते सर आप स्टार का नाम तो जान ही लोगे, आर मालू। बॉलीवुड में और साउथ इंडस्ट्री में दोनों में हिट फिल्म्स इनकी रही, लेकिन जैसे ही OTT पर लंबे अरसे बाद इनका नाम अनाउंस हुआ दी कपल से तो फैंस बहुत ज्यादा खुशी हुई। चली लंबे अरसे बाद ही सही, लेकिन आर माधवन फिर से कमबैक करते नजर आए। ऐसी अब बात करते हैं सुष्मिता सेन के बारे में। 90 से 2000 में टॉप एक्ट्रेस में रही जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियों के साथ, बी नंबर वन मैं हूं ना और फिर बॉलीवुड से बिल्कुल ही दूरी बना ली, लेकिन जब कमबैक किया तो OTT प्लेटफॉर्म पे आर्या जैसी कहानी के साथ कमबैक करके इन्होंने फिर से फैंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। इस लिस्ट में से स्टार्स तो बहुत सारे शामिल हैं, मैं यही बात करूं तो विवेक ओब्रॉय, बहुत सारी कहानियां इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में किरदार निभाए और अच्छा खासा प्यार बटोरा, लेकिन विवेक ओब्रॉय भी यार इंडस्ट्री से काफी दूर होते नजर आए, ना ही कोई किरदार निभाते नजर आए, ना ही कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट की कोई इन्होंने जानकारी दी। लेकिन जैसे ही एकदम से फैंस को पता चला सोशल मीडिया कि भाई OTT पर कमबैक कर रहे हैं वो भी इनसाइड एज से, तो फैंस का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और जैसे ही कहानी को रिलीज किया गया तो फैंस ने खूब इनके किरदार की वाहवाही की। और अब एक किरदार ऐसा अर्शद वारसी। बॉलीवुड करियर मुन्ना भाई MBBS धमाल के बाद थोड़ा सिल्वर स्क्रीन से दूर होते नजर आए, लेकिन भाई OTT प्लेटफॉर्म ने जिसे हर किसी को मौका दिया अर्शद वारसी को भी एक मौका दिया असुर। और फैंस का ये कहना है भाई अर्शद वारसी का अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया किरदार रहा असुर। असुर में इनका जो किरदार था इतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग, अपने करियर से बिल्कुल हट करके किरदार निभाया जहां इस कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। वैसे ये बात तो सच है कि OTT प्लेटफॉर्म ने ऐसे बहुत से स्टार्स को मौका दिया और फिर से उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बनाया अपनी इन कहानियों के साथ। बाकी ऐसे भी निर्माण चर्चाएं लाता रहूंगा, उससे पहले एक और खूब चलता है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाए। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
5: प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
5: आवारा हूँ आवारा।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

एक बहुत ही खूबसूरत गाना नगाड़ा संग ढोल बाजे, इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और देखिए दोस्तों, अगर यहाँ गाने की बात हुई है तो क्यों ना बॉलीवुड के कुछ ऐसे गानों की बात करें जहाँ कुछ फिल्मों को इतना ज्यादा प्रमोशन या इतना ज्यादा प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन उनके गानों ने अच्छा खासा प्यार बटोरा। यहाँ अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एक बहुत ही बढ़िया कहानी चाइना गेट के बारे में, 1998 में इस कहानी को रिलीज किया गया और इस कहानी का गाना छम्मा छम्मा जो कि इस मूवी से ज्यादा प्यार बटोरता नजर आया। फिल्म बेशक उतनी ज्यादा अच्छी साबित नहीं हुई, लेकिन उर्मिला मातोंडकर का ये डांस सॉन्ग लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर बात करते हैं यस बॉस, 1997 में इस कहानी को रिलीज किया गया था। फिल्म SRK की थी जहाँ पे हमें जूही भी नजर आई, और इस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस गाने का नाम है एक दिन आप। ये एक गाना चार्ट बस्टर बन गया था, इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। कहानी को तो प्यार मिला ही, लेकिन ये गाना शायद कहानी से भी ज्यादा फेमस हुआ। फिर बात करते हैं रेस, जिसको 2008 में रिलीज किया गया। पहली नजर में फिल्म हिट थी, लेकिन इस गाने का क्रेज आज भी उतना ही है जितना उस दौर में था। आतिफ असलम का मैजिकल वॉइस और रोमांटिक वाइब्स अच्छी खासी मैच हुई लोगों के फैन फॉलोइंग के साथ। फिर बात करता हूँ तुम ही हो फ्रॉम द मूवी आशिकी 2। फिल्म तो चल गई थी, लेकिन गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि उसने अरिजीत सिंह को सुपरस्टार बना दिया। हर टचिंग लिरिक्स और अरिजीत सिंह की सोलफुल आवाज, दोनों का मैच अच्छा खासा प्यार बटोरते नजर आया। फिर बात करते हैं केसरिया फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र। फिल्म ने मिक्स रिस्पांस दिया, ना ही ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बुरा, लेकिन केसरिया हर जगह बज रहा था। सिंपल लिरिक्स और परफेक्ट मेलोडी के साथ इस गाने ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। अब बात करते हैं झूमे जो पठान फ्रॉम द मूवी पठान, जिसको 2023 में रिलीज किया गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन ये गाना सबकी फिटनेस प्लेलिस्ट और शादियों का मस्ट प्ले सॉन्ग बन गया। SRK का स्वैग और विशाल शेखर का म्यूजिक, इन तीनों की तिकड़ी ने अच्छा खासा धमाल मचाया। बाकी ऐसी बॉलीवुड से और भी ढेरों बातें चर्चाएं लाता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

गाना फ्रॉम द मूवी ओके जानू और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर मैं मौत। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं 90s के दौर की और आज के दौर की कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जिन कहानियों के हीरोज की एंट्री ऐसी रही जो कि आइकॉनिक साबित हुई। तो ऐसे स्टार्स की बात करूं 1995 में रिलीज हुई फिल्म करण अर्जुन जहाँ पे SRK की एंट्री

को लोगों ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म के बहुत ही फेमस डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे। डायलॉग फेमस होने के बाद जब एसआरके जिंदा होकर एंट्री लेते हैं तो पूरा थिएटर सीटी मार बन जाता है। हर किसी ने इस सीन को बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर बात करते हैं अजय देवगन की फूल और कांटे। दो बाइक्स पे खड़े होकर एंट्री करने वाले पहले ऐसे स्टार बॉलीवुड में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा धमाका होगा। ये स्टंट आज भी अजय की पहचान माना जाता है। अब बात करते हैं खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की। अक्षय की एंट्री एक थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है जो उनका खिलाड़ी कुमार टाइटल ही बन जाता है। उनके एक्शन पैक्ड करियर का सॉलिड फाउंडेशन रही खिलाड़ी जो कि 1992 में रिलीज की गई। अब बात करते हैं 2000 के दौर की जब ऋतिक रोशन की एंट्री कहो ना प्यार है में होती है। स्लो मोशन में बीच के ऊपर शर्टलेस डांस, उसके बाद एक धमाकेदार फाइट सीन, इतना ज्यादा धमाल मचाया था इस कहानी ने और ऋतिक के किरदार के साथ डांस ने भी। इष्टविष्ट के शाहिद कपूर की एक बहुत बेहतरीन कहानी रही। कॉलेज बॉय की चॉकलेटी एंट्री, डांस मूव्स और क्यूट स्माइल के साथ जेन जी और 90s के किड्स का नए एज क्रश बन जाना शाहिद कपूर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। फिर बात करते हैं जॉन अब्राहम की धूम। 2004 में इस कहानी को रिलीज किया गया और एक राइडर हाई स्पीड बाइक चेज में एंट्री लेते हैं जॉन अब्राहम, और जब मास्क हटता है तो बूम, जॉन अब्राहम की एंट्री सबने बहुत ज्यादा पसंद किया और बॉलीवुड का सबसे कूल विलन बन गए थे जॉन अब्राहम। अब जाते आते यहाँ पे मैं एक नाम और लेना चाहूंगा, रणवीर सिंह। गोलियों की रास लीला 2013 में इस कहानी को रिलीज किया गया और धमाकेदार गन फायरिंग एंट्री और एनर्जी से भरी पर्सनालिटी, रणवीर का फुल ऑन पावर हाउस परफॉर्मर होना प्रूफ हो गया था इस कहानी में और इस कहानी की एंट्री के साथ। चलिए दोस्तों वैसे एक मैं नाम और ले ही देता हूँ, विकी कौशिक का उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। हाउस द जोश, ये डायलॉग बॉस इतना ज्यादा वायरल हुआ कि आज भी इस डायलॉग को लोग अपनी रील्स तक में यूज किया करते हैं। वैसे डायलॉग जब हाउस द जोश के साथ कमेंडो स्टाइल एंट्री हुई विकी कौशल की तो सुपरस्टार ट्रांसफॉर्मेशन रही उनके करियर की। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चाएं तो लेकर के आता ही रहूंगा, उससे पहले एक और खूब चर्चा करूंगा।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

एक बार फिर से लौट आया हूँ मैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं मोनिका। और दोस्तों अगर देखिए बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड सिर्फ मूवीज, एक्टर्स और डायलॉग्स के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ मूवी के टाइटल्स भी कई बार इतने ज्यादा हटके होते हैं जिसे सुनकर लगता है कि भाई ये क्या था। तो चलिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही टाइटल्स के बारे में जहाँ सुनकर के आप हंसी से लोटपोट हो जाने वाले हैं और स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि भाई कुछ ज्यादा ही हटके नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले बात करूँ 1971 में रिलीज की गई कहानी जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी, पर टाइटल इतना अजीब था तो लोगों को लगा कि ये कोई साइंस फिक्शन मूवी तो नहीं होने वाली। आगे बात करते हैं बॉलीवुड के ऐसी एक और टाइटल के बारे में जो कि 1988 में कहानी को रिलीज किया गया, जैसे कहानी का नाम था पाप को

लाकर राख कर दूंगा। एक प्रॉपर मसाला फिल्म जिसमें रिवेंज ड्रामा और एक्शन था, और टाइटल इतना ज्यादा ड्रामेटिक था लग रहा था भाई यहाँ पे एक्शन के अलावा और कुछ होना ही नहीं वाला। और अब यहाँ बात करते हैं ऐसे एक और टाइटल के बारे में जहाँ लग रहा था कि भैया मूवी का कोई कनेक्शन ही नहीं है इस टाइटल से। टाइटल का नाम है मट्टू की बिजली का मंडोला, जिसको 2013 में रिलीज किया गया। बॉलीवुड में कभी कभी मूवी का टाइटल ऐसा होता ना कि भैया हर कोई हैरान रह जाते हैं, भाई है क्या मूवी में, बताना क्या चाहते हो। और मूवी रिलीजिंग के दौरान लोगों को कहानी अच्छी भी लगती है, लेकिन आखिर में हर कोई यही सोचता है कि भैया टाइटल का क्या कनेक्शन था इस कहानी से। और यही जाते आते मैं एक कहानी का नाम और लेना चाहूंगा, लाली की शादी में लड्डू दीवाना। 2017 में इस कहानी को रिलीज किया गया था, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें विवान शाह और अक्षा हसन नजर आए थे। और टाइटल की अगर बात की जाए तो भाई इतना था डिफरेंट टाइटल है, इतना कुछ हटके टाइटल है जैसे कि रेडियो महारानी को छटके है। और लोगों को लग रहा भैया टाइटल जैसा है कि कहानी भी इतनी ज्यादा घूमी फिरी तो नहीं होने वाली, क्योंकि टाइटल से किसी को समझ नहीं आया कि भैया कहानी में एग्जैक्टली होने ही वाला है। लेकिन जब कहानी को रिलीज किया गया लगा भैया कहानी बिल्कुल सीरियसली ट्रैक पर चल रही थी, जो टाइटल था वो कुछ ज्यादा ही घुमा दिया गया। बाकी देखिए चलिए, कभी डायलॉग्स ट्रेंडिंग में रहते हैं तो कभी गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं, यही कुछ ऐसे टाइटल्स हैं मूवी के जहां मूवी की कहानी से ज्यादा लोगों ने टाइटल के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चा लेकर के आता रहूंगा, उससे पहले सुना देता हूँ एक और बढ़िया सा गाना।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ, बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी।

0: परेशान। हाँ
1: जी, ये गाना है फ्रॉम द मूवी कॉकटेल और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर, मैं फिल्मी टॉनिक। यार दोस्तों देखिए, आज हमने बॉलीवुड के पिटारे से बहुत सी बातें, बहुत सी चर्चाएं करी कि कुछ ऐसे स्टार्स जिन्होंने छोटे पर्दे से शुरुआत करी लेकिन उसके बाद सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई उन्हें एक नए प्रोजेक्ट में किसी नए किस्से कहानियों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहता है। वहीं बात करते हैं कुछ ऐसे स्टार्स जो कि सिल्वर स्क्रीन से तो गायब हो गए लेकिन एकदम से यानी अचानक से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंट्री ली बिल्कुल ही डिफरेंट किरदार के साथ, तो लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया और ये किरदार उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन गए। और कुछ ऐसे स्टार्स की किस्से कहानियां जब उनकी एंट्री ने इतना बड़ा धमाल मचाया, लोगों को लगा भैया ये एंट्री इतनी धांसू है कि फिल्म तो भैया सुपरहिट हो ही गई। और ऐसी और जो ना जाने कितनी सारी चर्चाएं हमने बॉलीवुड के गलियारे से पिटारे से की कि कौन कौन से स्टार्स हैं जो लोगों के दिलों पर हमेशा छाए रहे, तो कभी हीरो बनकर तो कभी विलन का किरदार बनकर भी लोगों का अच्छा खासा प्यार बटोरा। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें, ढेरों चर्चाएं फिल्मी गलियारे से आप सबके लेकर के आता रहूंगा कि कौन कौन सी नई कहानियां जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। कुछ ऐसे स्टार किड्स जो कि डेब्यू करने वाले हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ सिल्वर स्क्रीन पर, लेकिन ये सारी चर्चाएं मैं करूंगा आज। नहीं, आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह, करूंगा ढेरों बातें, तब तक सुनते हैं।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है।

कभी कभी एक हंसी के पीछे छुपा होता है एक लंबा सफर, एक ऐसा सफर जहां आंसुओं ने भी अपना रोल निभाया होता है। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो स्क्रीन पर आते ही चेहरे पर मुस्कान ला देता है, और उनका नाम है राजपाल यादव। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। साल 1971, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, एक छोटा सा गांव, सिंपल जिंदगी और बड़े सपने, यहीं पैदा हुए राजपाल यादव। उनका बचपन कोई फिल्मी नहीं था, ना ग्लैमर ना स्पॉटलाइट, बस एक आम जिंदगी जहां सपने देखना भी एक लग्जरी होती है। लेकिन राजपाल के अंदर एक अलग सी एनर्जी थी। वो लोगों को ऑब्जर्व करते थे, उनकी आदतें, उनकी बोली, उनका अंदाज, शायद वही ऑब्जर्वेशन बाद में उनकी कॉमेडी का बेस बना। स्कूल के बाद उन्होंने थिएटर की तरफ कदम बढ़ाया। यह आसान नहीं था, क्योंकि एक्टिंग को करियर बनाना उस वक्त एक रिस्की डिसीजन माना जाता था, लेकिन राजपाल यादव ने रिस्क लिया। वो लखनऊ के भारतीय नाट्य अकेडमी गए और फिर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचे। गांव से निकला एक लड़का अब एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार था, और फिर मुंबई ने उन्हें बुला लिया। और कैसे बने वो सुपरस्टार, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: हर कॉमेडियन की लाइफ में एक फेज होता है जहां हंसी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं होती, वो स्ट्रगल को सरवाइव करने का तरीका बन जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन राजपाल यादव के लिए ये शहर पहले एक टेस्ट था। छोटे रोल्स, साइड कैरेक्टर्स और कभी कभी तो सिर्फ एक दो सीन्स। उन्होंने टीवी शोज में काम किया, जैसे मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। उनकी हाइट और उनका यूनिक फेस इंडस्ट्री के टिपिकल हीरो स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होता था, लेकिन राजपाल ने इसी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। उन्होंने डिसाइड किया, मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं याद रहने वाला कैरेक्टर बनूंगा। और धीरे धीरे लोग उन्हें नोटिस करने लगे। उनकी टाइमिंग, उनका एक्सप्रेशन और वो नेचुरल कॉमिक फील सब अलग था। स्ट्रगल लंबा था, लेकिन राजपाल रुकने वालों में से नहीं थे। उन्हें बस एक ब्रेक चाहिए था, और वो ब्रेक आया एक अनएक्सपेक्टेड रोल के साथ। कौन सा था वो रोल, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे? सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

कभी कभी एक रोल पूरी जिंदगी बदल देता है और राजपाल यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। राजपाल यादव के लिए वो जिंदगी बदलने वाला रोल था ना, वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे थे। 2000 का दौर, बॉलीवुड में कॉमेडी का गोल्डन फेज, फिल्म हंगामा, चुप चुप के, गरम मसाला, भूल भुलैया और हर जगह एक नाम कॉमन था, राजपाल यादव। उन्होंने सिर्फ कॉमेडी नहीं की, उन्होंने कैरेक्टर्स क्रिएट किए, चाहे वो छोटा पंडित हो या एक कंफ्यूज नौकर, हर रोल में उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती थी। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनका इनोसेंस। उनकी कॉमेडी लाउड नहीं होती थी, वो सिचुएशन और एक्सप्रेशन से आती थी। ऑडियंस को लगता था ये बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये सच में ऐसा ही है, और वही उनकी जीत थी। राजपाल यादव अब सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो बॉलीवुड के मोस्ट लव्ड कॉमेडियंस में से एक बन चुके थे। और आगे क्या क्या चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए और कैसे करा उन्होंने कमबैक, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

जिंदगी सिर्फ हंसी का नाम नहीं, कभी कभी वही जिंदगी सबसे टफ सीन्स भी लिख देती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में आज हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। सक्सेस के बाद भी राजपाल यादव की लाइफ में चैलेंजेस आए, कुछ पर्सनल और लीगल इश्यूज ने उनके करियर को स्लो कर दिया। वो फेज उनके लिए आसान नहीं था, इंडस्ट्री भी फास्ट मूव करती है और जब आप रुकते हो तो लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन राजपाल ने हार नहीं मानी, उन्होंने वापस काम शुरू किया। छोटे रोल से ही सही बट काम कंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने प्रूव किया कि असली आर्टिस्ट वही होता है जो गिर कर भी खड़ा हो जाए। आज जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ऑडियंस स्माइल कर देती है क्योंकि कनेक्शन अब भी वही है। और कुछ हंसी कभी कभार दिल से आती है और मेरे ख्याल से राजपाल यादव को देखते ही हम सबके अंदर जो स्माइल है वो हमेशा दिल से आती है। तो करेंगे राजपाल यादव की लाइफ के बारे में और भी बात, कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स को फेस किया इसके बारे में और भी बात करेंगे मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कुछ लोग सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, वो लोगों के मूड को चेंज कर देते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वन आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं वन एंड ओनली राजपाल यादव की। राजपाल यादव की जर्नी सिर्फ कॉमेडी की कहानी नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल की, सेल्फ बिलीफ की और अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करने की। उन्होंने कभी अपने आप को चेंज नहीं किया, ना ही किसी और जैसा बनने की कोशिश की। उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनी पहचान बना लिया, इसलिए उनकी कॉमेडी हमेशा रियल लगती है। आज जब भी उनका कोई भी सीन टीवी पर आता है, लोग रुक कर देखते हैं, क्योंकि राजपाल यादव सिर्फ जोक्स नहीं सुनाते, वो एक फीलिंग क्रिएट करते हैं, एक ऐसी फीलिंग जो थोड़ी देर के लिए ही सही मगर जिंदगी की टेंशन भुला देती है। और शायद इसीलिए राजपाल यादव सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक रिलीफ है। एंड राजपाल यादव की कोई भी मूवी की बात करी जाए तो वो हमेशा कम पड़ जाएगी, क्योंकि उनके रोल्स हमेशा से अमेजिंग थे, भले ही छोटा पंडित हो या फिर हो भांडिया या फिर हो मारतंड फ्रॉम द मूवी ढोल। तो राजपाल यादव के बारे में थी ये कहानी, और आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए कामयाबी की उड़ान में हम और भी स्टोरीज लेकर आते रहेंगे, और आप किसके बारे में स्टोरी सुनना चाहते हैं आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

बात है ना, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, दे बिकम इमोशन, मेमोरीज एंड मोटिवेशन. अभी जो गाना आपने सुना है सी यू अगेन, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी है जो लाइफ में बहुत दूर निकल जाते हैं लेकिन उनकी जर्नी आसान नहीं होती. हेलो हाय, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके. मैं आपके साथ गीत हूँ और शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड. और आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनके पास शुरुआत में ना कनेक्शंस थे, ना लग्जरी थी और ना पावरफुल इंग्लिश. बस था तो एक सपना और उस सपने के पीछे भागने की हिम्मत. अ स्मॉल टाउन बॉय, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और फिर अचानक ही कैसी दुनिया जहां लोग लैंग्वेज से जज करते हैं. इमेजिन बीइंग ब्रिलियंट बट स्टिल फीलिंग लेफ्ट आउट, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं थी. कभी जो लड़का टॉपर हुआ करता था, अब वही लड़का खुद को क्राउड में लॉस्ट फील करने लगा. लेकिन कुछ लोग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, दे चेंज द सिचुएशन इटसेल्फ. उन्होंने खुद कोडिंग सीखी, इंग्लिश सीखी, रिस्क लिया, फेलियर्स देखे और वो रास्ता चुना जिससे लोग अक्सर डरते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप. एक ऐसा फेज भी आया जब फैमिली ने कहा बस करो, कंपनी बंद करो, स्टेबल नौकरी कर लो. और ऑनेस्टली उस वक्त की बात बहुत प्रैक्टिकल थी, बिकॉज एट द एज ऑफ 27 उस इंसान की सैलरी सिर्फ 10,000 थी. इतनी कम के रिश्ते तक आने बंद हो गए थे, बट डेस्टिनी हैड डिफरेंट प्लान्स. आज वही इंसान इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन का एक बड़ा चेहरा बन चुका है. फ्रॉम मोबाइल रिचार्ज टू मूवी टिकट्स टू ऑनलाइन पेमेंट्स, आज करोड़ों लोग उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, शायद बिना ये जाने कि उसके पीछे की कहानी कितनी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है. तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे सक्सेस की नहीं, सक्सेस के पीछे वाले अकेलेपन की, प्रेशर की, फेलियर्स की और उस हंगर की जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है. लेकिन अभी नाम रिवील नहीं करूंगी, बिकॉज अगले लिंक में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उस बिजनेसमैन से जिसने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई बल्कि इंडिया की पेमेंट हैबिट बदल दी. स्टे ट्यून्ड, दिस इज बिजनेस अनप्लग्ड विद

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत हूँ। अभी तक हम उस इंसान की बात कर रहे थे जिसकी स्टोरी छोटे शहर से शुरू होकर बिलियन डॉलर सक्सेस तक पहुँची। अब टाइम है नाम रिवील करने का, बट ऑनेस्टली ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। द मैन वी आर टॉकिंग अबाउट इज विजय शेखर शर्मा, यस द फाउंडर ऑफ पेटीएम। अगर आज इंडिया में कोई चाय वाले से लेकर शॉपिंग मॉल तक QR कोड स्कैन कर रहा है तो रेवोल्यूशन के पीछे कहीं ना कहीं विजय शेखर शर्मा का विजन खड़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, उन्होंने शुरुआत बिलियनेयर बनकर नहीं की थी। He was just a small town boy from उत्तर प्रदेश, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, टीचर फादर, सिंपल फैमिली, और शायद इसी वजह से उनकी स्टोरी इतनी रिलेटेबल लगती है, क्योंकि कहानी प्रिविलेज की नहीं है, ये कहानी हसल की है। A boy who once struggled to even speak English, आज इंटरनेशनल

इन्वेस्टर्स के साथ बिलियन डॉलर मीटिंग करता है। अ मैन जिसे कभी 10,000 सैलरी पर लोग सेटल हो जाओ बोलते थे, आज उसे इंसान की कंपनी ने इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट IPO लॉन्च किया। बट ट्रस्ट मी, सक्सेस सुनने में जितनी ग्लैमरस लगती है ना दोस्त, उतनी होती नहीं है। बिहाइंड एवरी बिग कंपनी देयर इज अ फेज ऑफ लोनलीनेस, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट एंड साइलेंट सेक्रीफाइसेस। विजय शेखर शर्मा की जर्नी में भी वो फेज आया था जब उन्हें लगा शायद वो पीछे रह गए हैं, जब फैमिली को समझ नहीं आता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। एंड समवेयर दैट्स द मोस्ट ह्यूमन पार्ट ऑफ हिज स्टोरी, क्योंकि जब आपके ड्रीम्स लोगों को समझ नहीं आते हैं तब सबसे मुश्किल होता है खुद पर बिलीव करते रहना। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने सिर्फ बिजनेस बिल्ड नहीं किया, उन्होंने इंडिया की हैबिट बदल दी। रिचार्ज ऐप से शुरू हुई जर्नी आज बैंकिंग, टिकट्स, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग सब तक पहुंच चुकी है। और सबसे इमोशनल बात, एक दिन उनकी माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उन्होंने उनसे पूछा, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है? इमेजिन दैट मोमेंट, जब एक मिडिल क्लास मदर को खुद यकीन ना हो कि उनका बेटा इतना बड़ा नाम कमा चुका है। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बच्चा होता है जिसने कभी क्वाइटली स्ट्रगल किया होता है। तो अब मैं बात करूंगी उसी स्ट्रगल के बारे में, उनके चाइल्डहुड, उनकी एडुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, कि कैसे एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने अपने ड्रीम्स को लिमिटेशन नहीं बनने दिया। तो स्टे ट्यून, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो आप सबके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, सबने हमेशा सब मांगे, उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर, योर पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

Hey, welcome back. You are listening to Business Unplugged. आज तक आपने विजय शेखर शर्मा को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह देखा होगा, बट एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वॉज वंस जस्ट अ किड विद कंफ्यूजन, फियर एंड ड्रीम्स. सो लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग. विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ, अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली. उनके फादर एक स्कूल टीचर थे, एडोलेसेंट डिसिप्लिन्ड और एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते थे. मदर वॉज अ होम मेकर. सिंपल फैमिली वैल्यूज, सिंपल लाइफ स्टाइल. लेकिन ड्रीम्स छोटे नहीं थे. अब इमेजिन कीजिए कि सिर्फ 14 साल की उम्र और कोई बच्चा 12th पास कर ले. साउंड्स अनबिलीवेबल ना? लेकिन विजय शेखर शर्मा ने यही किया. ही वॉज ब्रिलियंट इन स्टडीज, स्कूल टॉपर, शार्प माइंड, और शायद इसी वजह से इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया. और यहीं से उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्न आया, बिकॉज टैलेंट होने के बावजूद उन्होंने खुद को अकेला फील करना शुरू कर दिया. रीजन, इंग्लिश. उन्होंने पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की थी और सडनली वो एक ऐसे एनवायरनमेंट तक पहुंच गए थे जहां हर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था. क्लासेस इंग्लिश में, बुक इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में. और एक लड़का जो इंटेलिजेंट था लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से खुद को पीछे महसूस करने लगा था. उन्होंने खुद कहा था कि एक ऐसा टाइम आया जब वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कॉलेज जाना तक बंद कर दिया था. इमेजिन द प्रेशर, जब आप कैपेबल हो लेकिन खुद को एक्सप्रेस न कर पाओ. बट दिस इज द पार्ट आई पर्सनली लव अबाउट हिज स्टोरी. उन्होंने हार नहीं मानी. ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ऑन हिज ओन. पुरानी मैगजीन्स पढ़ी, बुक्स पढ़ी, फ्रेंड्स की हेल्प ली और एक ही किताब का हिंदी और इंग्लिश वर्जन साथ में पढ़ते थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड्स बेटर. और शायद यही डिफरेंस होता है ड्रीमर और अचीवर में. ड्रीमर्स सिर्फ सोचते हैं, अचीवर्स अनकंफर्टेबल होकर भी सीखते हैं. लेकिन कॉलेज के दौरान ही उनका फोकस सिर्फ डिग्री पर नहीं रहा, उन्होंने कोडिंग सीखनी शुरू की, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा. व्हाइल अदर्स वर लुकिंग फॉर जॉब्स, ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फॉर हिज ओन. उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसे कुछ बड़े न्यूज पब्लिकेशंस ने यूज करना भी शुरू कर दिया. एंड यस, उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू की, लेकिन सिर्फ 6 महीने, बिकॉज समवेयर द एंटरप्रेन्योर इनसाइड हिम वाज टू रेस्टलेस फॉर अ रेगुलर लाइफ. उन्होंने जॉब छोड़ दी और दोस्तों के साथ अपनी कंपनी शुरू कर दी. अब बस यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि डेंजरस होने लगती है, बिकॉज ड्रीम शुरू हो चुका था लेकिन सक्सेस अभी बहुत दूर थी. तो अब मैं बात करूंगी उसी स्ट्रगल के बारे में जब बिजनेस चल नहीं रहा था, सैलरी सिर्फ 10,000 थी, फैमिली प्रेशर बढ़ रहा था और कैसे इन्होंने अपनी फर्स्ट रियल टीम बनाई. सो स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

गाना है फ्रॉम द मूवी धुरंधर और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है बिजनेस अनप्लग्ड में, आपके साथ गीत हूँ। अब तक हमने जाना कैसे विजय शेखर शर्मा एक स्मॉल टाउन हिंदी मीडियम स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी पर निकले, लेकिन ऑनेस्टली ड्रीम शुरू करना आसान होता है, उसे सर्वाइव कराना सबसे मुश्किल। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप लुक्स एक्साइटिंग ऑन इंस्टाग्राम बट इन रियल लाइफ इट कैन ब्रेक यू मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। विजय शेखर शर्मा के साथ भी यही हुआ, इन्होंने जॉब छोड़ दी, अपने दोस्तों के साथ कंपनी शुरू की, आइडियाज थी, पैशन था, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी और मिडिल क्लास फैमिलीज में सबसे बड़ा प्रेशर पता क्या होता है, स्टेबल हो जाओ यार। उनके फादर भी यही कहा करते थे, कंपनी बंद करो, नौकरी कर लो, अगर 30,000 भी मिल रहे हैं तो बहुत है। और एक सच बात बताऊं, पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, वो बस हमें स्ट्रगल में टूटते हुए नहीं देख सकते। और मैंने कहीं जाकिर की वो एक लाइन सुनी थी कि माँ बाप हमारे पैशन से नहीं जलते, वो बस इस बात से दुखी होते हैं कि कहीं हम गरीब ना रहें। लेकिन उस टाइम विजय शेखर शर्मा एक ऐसे फेज में थे जहां ड्रीम्स और रियलिटी दोनों लड़ रहे थे, एक तरफ थे एम्बिशन और दूसरी तरफ बिल्स। उन्होंने खुद बताया था कि एक ऐसा टाइम भी आया जब उनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए थी। कैन यू इमेजिन बिल्डिंग बिग ड्रीम्स विद ऑलमोस्ट नो मनी, इतने कम इनकम कि रिश्ते तक आने बंद हो गए। इन्होंने खुद को इन एलिजिबल बैचलर तक कह दिया। दैट लाइन साउंड्स फनी मे बी बट समवेयर इट्स पेनफुल टू, क्योंकि सोसाइटी सक्सेस को नहीं रिजल्ट को रिस्पेक्ट करती है। जब तक स्ट्रगल चल रहा होता है लोग आपको कंफ्यूज्ड समझते हैं, लेकिन इसी फेज में इन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टेड ऑफ क्विट इन्होंने सीखा कंटिन्यू रखना। कोडिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल इको सिस्टम, वो फ्यूचर को समझ रहे थे जब बाकी लोग प्रेजेंट में स्टक थे। और यहीं से धीरे धीरे उनकी टीम बननी शुरू हुई, नॉट अ बिग कॉर्पोरेट टीम, बस कुछ लोग जो आइडियाज पर बिलीव करते थे। कई बार ऑफिस छोटा था, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन विजन बड़ा था। और बिजनेस में सबसे पावरफुल चीज फंडिंग नहीं होती, बिलीफ होता है। जब कुछ लोग आपके ड्रीम पर ट्रस्ट

करते हैं ना, वहीं से एम्पायर बनना शुरू हो जाता है। इन्होंने पहले कई एक्सपेरिमेंट किए, कई प्रोडक्ट्स चले नहीं, फेलियर्स आए, लेकिन इन्होंने इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी की पावर को बहुत पहले पहचान लिया था। एंड देन एक आइडिया आया जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, अ सिंपल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसे आज दुनिया पेटीएम के नाम से जानती है। लेकिन पेटीएम ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, उसके पीछे स्लीपलेस नाइट्स थी, टीम प्रेशर था, फाइनेंशियल रिस्क था, और वो फियर भी था कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन कभी कभी लाइफ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अनसर्टेनिटी में भी खुद पर बेट लगाते हैं, और मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी देर बाद उस मैसिव सक्सेस की, कंपनी का टर्नओवर ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया बिगेस्ट आईपीओ, और आज प्रेजेंट टाइम में पेटीएम कहाँ खड़ा है अब सबको मालूम है। सो स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड विद आरजे गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

वेलकम बैक अगेन, यू आर लिस्निंग टू बिजनेस अनप्लग्ड एंड मैं आपके साथ गीत हूँ। और आज की जर्नी अब तक पहुंच चुकी है उस पॉइंट पर जहां स्ट्रगल कहानी नहीं रहती बल्कि हिस्ट्री बन जाती है। विजय शेखर शर्मा, एक ऐसा नाम जिसे आज इंडिया सिर्फ बिजनेसमैन नहीं डिजिटल रेवोल्यूशन के फेस की तरह जानती है। लेकिन सोचिए, जिस इंसान को कभी इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती थी, जिसकी सैलरी सिर्फ 10,000 थी, जिसे लोग स्टेबल हो जाओ बोलते थे, आज उसी इंसान की कंपनी करोड़ों इंडियंस की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। पेटीएम ने शुरुआत सिर्फ मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के तौर पर की थी, बट देन एवरीथिंग चेंज्ड। धीरे धीरे लोगों ने बिल्स पे करने शुरू कर दिए, मूवी टिकट्स, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन टिकट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, यूपीआई पेमेंट्स। और देखते ही देखते पेटीएम सिर्फ ऐप नहीं रहा बल्कि हैबिट बन गया। आज इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी ना कभी पेटीएम यूज ना किया हो। एंड देन केम द मोमेंट जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पेटीएम लॉन्च्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट आईपीओज, 18,300 करोड़ रुपीज। जस्ट इमेजिन दैट नंबर। एक सिंपल से लड़के का सपना पूरे स्टॉक मार्केट की हेडलाइन बन चुका था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइक सॉफ्ट बैंक, बर्कशायर हैथवे एंड एंट ग्रुप सबने इस विजन पर ट्रस्ट किया। 2017 में विजय शेखर शर्मा इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर्स में शामिल हो गए। लेकिन सक्सेस का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? जब उनकी मदर ने न्यूज़पेपर पढ़कर पूछा, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या बेटा? एंड ऑनेस्टली उस मोमेंट में शायद पूरी जर्नी छुपी हुई है। अ मदर हु वंस सॉ हर सन स्ट्रगलिंग साइलेंटली, अब उसी बेटे को दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन स्टोरी यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये स्टोरी है बिलीव की। बिकॉज विजय शेखर शर्मा ने हमें एक चीज सिखाई है, लैंग्वेज बैरियर परमानेंट नहीं होता, स्मॉल टाउन वीकनेस नहीं होता, मिडिल क्लास बैकग्राउंड लिमिटेशन नहीं होता। अगर कुछ पावरफुल होता है तो वो होता है विजन। और शायद इसीलिए हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पहले मिसअंडरस्टूड होता है। आज जब लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, दे सी कन्वीनियंस, लेकिन इसके पीछे किसी की स्लीपलेस नाइट्स, फेलियर्स, लोनलीनेस और इयर्स ऑफ हसल छुपे होते हैं। और यही वजह है कि आज की स्टोरी सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं थी, इट वॉज अ रिमाइंडर कि ड्रीम्स का कोई एक्सेंट नहीं होता। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि रिसोर्सेज कम है, इंग्लिश वीक है, सपोर्ट नहीं है, देन रिमेम्बर दिस स्टोरी, बिकॉज समटाइम्स द बॉय एवरीवन डाउट्स बिकम द मैन हिस्ट्री रिमेम्बर्स। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी, अनदर अनस्टॉपेबल जर्नी। टिल देन कीप ड्रीमिंग, कीप बिल्डिंग एंड नेवर अंडरएस्टिमेट योर बिगनिंग। सो सुनते रहे रेडियो महारानी 99.6 FM, कुछ हटके।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

क्या कभी नोटिस किया है, एक छोटी सी घंटी की आवाज और अचानक से हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। मंदिर की घंटी हो, स्कूल की घंटी हो, या फिर बचपन की साइकिल की टन-टन, घंटी सिर्फ आवाज नहीं करती, वो यादें जगा देती हैं। वो कहा है कि कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस यादों की अलमारी में संभाल कर रख दी जाती है। और इसी के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजलि और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो सदियों से हमारी जिंदगी में बच रही है, लेकिन शायद हमने उसकी कहानी कभी नहीं सुनी। तो आज बात कर रहे हैं घंटी की कहानी की। तो आइए चलिए जानते हैं कितनी पुरानी है ये कहानी। आज से हजारों साल पहले, जब मोबाइल नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, तब आवाज ही सबसे बड़ा संदेश हुआ करती थी, और इसी आवाज का सबसे भरोसेमंद साथी था घंटी। पुराने भारत में मंदिरों, राजमहलों और गांवों में अलग अलग तरह की घंटियां इस्तेमाल की जाती थी, लोगों को बुलाने के लिए, समय बताने के लिए और कभी कभी खतरे की सूचना देने के लिए। लेकिन आज नोटिफिकेशन बजता है, कभी घंटी ही दुनिया को जोड़ती थी। तो घंटी के बारे में आज और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंशी आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। आज हम बात कर रहे हैं बरसों पुरानी घंटी के बारे में, तो चलिए फिर जानते हैं मंदिर की घंटी का रहस्य। सबसे पहले बात करें कि आखिर मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। ये सिर्फ परंपरा नहीं, इसके पीछे खूबसूरत सोच भी है। माना जाता है कि घंटी की गूंज मन को वर्तमान में ले जाती है। जो फिक्र कल की थी वो कुछ पल के लिए रुक जाती है और बस एक ध्वनि रह जाती है। वो कहा है कि कभी कभी सुकून किसी जगह में नहीं, बस एक आवाज में मिल जाता है। और यही रीजन है कि गांव की सुबह का घंटी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। एक वक्त था जब गांव की सुबह अलार्म से नहीं, घंटी से खुलती थी। गायों के गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज से खुलती थी। दूर खेत की तरफ जाते हुए पशु और उनके साथ बजती छोटी छोटी घंटियां, वो आवाज गांव की पहचान हुआ करती थी। और आज भी कई गांव में ये सुरीली परंपरा जिंदा है। और सिर्फ इतना कनेक्शन नहीं है घंटी का हमारी जिंदगी में, स्कूल की घंटी जो आज भी बचपन याद दिला दे, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वापस आकर तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की यानी घंटी की। तो आइए चलिए जानते हैं कि स्कूल की घंटी और बचपन का क्या कनेक्शन है। अब बात पूछूं कि स्कूल की सबसे प्यारी आवाज कौन सी थी, टीचर की या फिर लंच ब्रेक वाली घंटी की? तो आवाज आती है लंच ब्रेक वाली घंटी, यानी एक घंटी बजती थी और पूरी क्लास में खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। लंच बॉक्स खुलते थे, मैदान भर जाता था और लगता था दुनिया की सबसे बड़ी आजादी मिल गई हो। वो कहा है कि बचपन में कुछ खुशियां बहुत सस्ती थी, एक घंटी और पूरा चेहरा मुस्कुरा देता था। और इतना ही नहीं, घंटी की आवाज याद दिलाती है साइकिल की टन टन। साइकिल और घंटी का रिश्ता भी कमाल का है। पुरानी गलियों में दूध वाला, अखबार वाला या फिर कोई दोस्त, सबकी पहचान उनकी साइकिल की घंटी से होती थी। दूर से टन टन सुनते ही पता चल जाता था कौन आ रहा है। और आज हॉर्न ज्यादा है पर उस टन टन जैसा अपनापन कहाँ। और ये सफर सिर्फ लंच ब्रेक तक नहीं, राजमहल से मंदिर तक जा पहुंचा, जहां पुराने समय में राजमहल में भी बड़ी बड़ी घंटियां हुआ करती थी। सभा शुरू होने पर किसी इम्पोर्टेंट घोषणा के समय या किसी उत्सव की शुरुआत में घंटी हमेशा बजाई जाती थी। ये एक आवाज और पूरे महल को पता चल जाता था कि कुछ खास होने वाला है। और इतना ही नहीं, ये आवाज अपने साथ बहुत सारे किस्से कहानियां लाई है, जिसके बारे में बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं घंटी के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं आखिर घंटी हमें क्या सिखाती है। अब बात करें उस घंटी की, तो सबसे खूबसूरत बात क्या है, वो बजती है, गूंजती है और फिर खामोश हो जाती है, लेकिन इसकी आवाज फिर भी कुछ देर तक हवा में रहती है, बिल्कुल अच्छे लोगों की तरह। जो चले जाते हैं वो उनकी बातें और यादें साथ रह जाती हैं। वो कहा है कि आवाज रुक जाती है मगर असर नहीं रुकता। साथ ही ये घंटी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे गहरी बात सबसे छोटी आवाज कहलाती है। मंदिर में हो, स्कूल में हो या बचपन की किसी गली में, घंटी सिर्फ बजती नहीं, वक्त को जगा देती है। वो कहा है कि ना उसके पास शब्द होते हैं ना कोई जबान होती है, फिर भी एक घंटी कभी कभी पूरा एहसास बयां कर देती है। और आज कहीं घंटी की आवाज सुनो तो सिर्फ सुनना मत, उसके साथ जुड़ी अपनी कोई याद भी जरूर ढूंढना। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक और साधारण सी चीज में छुपी एक असाधारण कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की

0: जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: आई नो आप में से बहुत सारे लोग आज ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ऑफिस आए ही क्यों, मंडे का दिन है और मेरा तो गला खराब पड़ा है। मगर ये जो बारिश हुई थी ना अभी पिछले हफ्ते, तो इसकी वजह से ही ये गला खराब हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ठंडा पी लिया हो, नहीं, वीकेंड मेरा ऐसा नहीं गया था, इतना हैप्पी नहीं गया था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। शाम हो चुकी है, बस यही बताने आया था कि मैं आ गया हूँ और अगले 3 घंटे तक खूब सारी बातें होने वाली है। क्या क्या बातें हम लोग करने वाले हैं वो सब कुछ बताऊंगा, मगर उससे पहले गाना चलाऊंगा। सुनिए इस गाने को, मैं बस यूं गया और यूं आया।

मंडे का दिन हो और काम करने का मन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सबका यही हाल है एक्सेप्ट मी, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे आप लोगों से बात करने आना होता है और आई डू इट हैप्पीली। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, और अगले 3 घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। एंड एक बात बता दूँ आप लोगों को, देखो दिल्ली हो या फरीदाबाद हो या फिर हो देश की कोई भी बात, कोई भी अपडेट, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तो मैं तो आ चुका हूँ, और अगले 3 घंटे तक हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं सोचो जरा। मतलब एक चीज है, जैसे कहते हैं मॉनसून, जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मॉनसून इस बार थोड़ा सा कम पड़ने वाला है। मैं बहुत दिन से इसके बारे में बात कर रहा था और करेंगे इसके बारे में बात। और साथ ही साथ एक ऐसी वीडियो आई मेरे सामने जिसको देखने के बाद आई वाज लाइक शॉक्ड, क्योंकि एक लड़का उसका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो जाता है और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गया, बट फैमिली को लगा वो रो रहा है और फिर फैमिली वाले उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। 15 मिनट बाद पता चला कि वो बेहोश हो चुका है। क्या है पूरा मामला सब कुछ बताऊंगा। और इसी के साथ साथ अभी आपने वीकेंड पर वो देखा जब धूल भरी आंधी आई थी जैसलमेर में, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात। और इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो जी नंबर है मेरा 9654896896। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ, वापस आकर और भी ढेरों बातें होती रहेंगी मेरे दोस्त। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।

आप लोग अपनी जॉब से कितना प्यार करते हो? नहीं, होता है काफी बार लोग अपनी जॉब से बहुत प्यार करते हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे घर का चूल्हा इसी वजह से चल रहा है, तो हम लोग अपनी जॉब से प्यार करेंगे ही करेंगे। करना पड़ जाता है कुछ लोगों को, मगर कुछ लोग प्यार से जॉब करते हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने मनपसंद वाली जॉब कर रहे होते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी रिसेंटली मैंने कुछ लोगों से पूछा, और वो लोग वो थे जो रिटायर हो चुके थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे, तो उनकी एडवाइस यही थी कि या तो काम से प्यार कर लो या फिर प्यार से काम कर लो। तो दोनों में फर्क है। फर्क इतना सा है कि आप लोग जिस काम को कर रहे हो, अगर आप मजबूरी में भी कर रहे हो, फिर भी आप उससे प्यार कर लो, क्योंकि प्यार तो करना पड़ेगा, तभी आपका घर चलेगा, तभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ पाओगे। या फिर उस काम को कीजिए जिससे आप प्यार करते हैं, जो करने में आपको ना खुशी मिलती है। तो ये तो थी एडवाइस बुजुर्ग द्वारा हम सभी यंगस्टर्स के लिए। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप जिस जॉब पे हो वो आपके लिए फिट नहीं है, आपके लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग है, तो कट लो वहां से, क्योंकि आप बॉटल से निकलोगे तभी तो ग्लास में जाओगे। मैं पानी की बात कर रहा हूँ वैसे। और बता दूं आपको, काफ़ी बार ऐसा होता है हम लोग अपने मन को मार कर जॉब करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है आप लोग भी अपने मन को मार के जॉब कर रहे हो, तो आप लोग अपने पसंद की जॉब ढूंढो, उसके बाद अपनी पहली जॉब को क्विट करना। क्योंकि एक ऐसी ही लड़की ने जॉब क्विट करी और अभी वो ड्राइवर बन गई है। क्या जॉब करती थी करेंगे उसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा सुन।
2: Shit.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू फोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

अभी थोड़ी देर पहले मैं जॉब की बात कर रहा था, और मंडे को जब भी जॉब की बात आती है तो सबके मन में एक सवाल आता है कि यार क्यों आना पड़ रहा है मंडे को, और वैसे भी छोटे बच्चों की जब समर वेकेशन है तो हम लोगों की जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है उन लोगों की भी तो समर वेकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड समर वेकेशंस की बात कर रहा हूँ, मगर उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ जॉब की। और यहाँ पर एक आईटी मैनेजर ने अपनी नौकरी छोड़कर ऑटो ड्राइवर बन गई, और ये लड़की ने 9 साल तक एज एन आईटी मैनेजर काम किया है। और इन्होंने जॉब क्यों छोड़ी, यानी काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और लगातार टेंशन में रहती थी, और इसके चलते इन्होंने नौकरी छोड़ दी और अब ये ऑटो ड्राइवर बन गई है। और इन्होंने खुद से एक वीडियो शेयर की है, और वीडियो में खुद दिख रही है बोलते हुए कि अब हर महीने 60-70 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ और खुश भी हूँ। 60-70 हज़ार रुपये वो भी ऑटो के थ्रू ये कमा रही हैं। बट मेरे अंदर एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि गर्मियों में वो 60-70 हज़ार रुपये वर्थ इट होते भी होंगे या फिर नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन पॉल्यूशन एंड ऑल, क्योंकि ऑटो चला रहे हैं ना, तो ऑटो में जो ऑटो चलाते हैं उन लोगों से एक बार पूछिए, दिन में धूप झेलनी पड़ती है, लोगों से 100 बातें होती हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट। और बता दूं आपको, इस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स जब मैं पढ़ रहा था, दे वर अमेजिंग। लोग कह रहे अब तो इनको फ्रीडम मिल गई है अपनी जॉब से। तो आप लोग बताइए, आप लोग जॉब छोड़ के कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, या फिर आपके मन में भी सवाल आएगा कि लोग क्या कहेंगे, चलिए इसके बारे में सोचिए जरा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते चाहिए आप सभी के लिए, रेडियो महारानी 89.6 पर, ये गाना मिक्स मैशअप वाला।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

शाम का वक्त है और इस टाइम चाय मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना, कि घर पहुंचो और चाय मिल जाए रेडी मेड और फिर उसके साथ साथ बिस्किट नमकीन कुछ भी हो खाने के लिए, ABC XYZ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। जोगी रिमिक्स था ये गाना और मैं चाय की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चाय जो एक तो घर में बनती है वो भी टेस्टी लगती है, और काफ़ी बार हम लोग एक्सपेक्टेशन से जाते हैं दुकान पर और दुकान पर चाय मांगते हैं, बट वहाँ पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि वहाँ की चाय पसंद नहीं आती। तो किसी जगह की चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है तो किसी जगह मसाला चाय होती है वो और भी ज़्यादा टेस्टी होती है। अच्छा आप लोग सच सच बताना, आप लोगों ने ये मसाला चाय सबसे पहली बार टेस्ट कब की थी? एंड यू नो वॉट, मैं मसाला चाय की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मसाला चाय दुनिया की बेस्ट चाय घोषित हो चुकी है, ऑल थैंक्स टू इंडिया, क्योंकि इंडिया से ही ये मसाला चाय शुरू हुई है। भले ही चाय पत्ती की इन्वेंशन हुई हो चाइना में, बट इंडिया किसी से कम है क्या, और इंडिया ने चाय को मशहूर कर दिया। और बता दो आपको, ग्लोबल फूड एंड बेवरेज गाइड टेस्ट एटलस में दुनिया की टॉप 100 चाय की लिस्ट थी, उनमें से भारत की जो मसाला चाय है उसको दुनिया की सबसे अच्छी चाय बताया गया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, बता रहा हूँ आपको, इंडियन चाय में से दार्जिलिंग चाय होती है, असम चाय होती है, केरला की सुलेमानी चाय है, जम्मू कश्मीर का कहवा है, और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है, जम्मू कश्मीर की नून चाय भी शामिल है जिसमें नमक मिला होता है बहुत हल्का सा। तो इतने सारी चाय के बीच में कौन सी सबसे बेहतरीन क्या थी? मसाला चाय। तो ये तो एक प्राउड वाली बात है इंडिया की। तो चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं एक मसाला चाय पी के आता हूँ, आप लोग अभी गाना सुनिए, गाने को एंजॉय कीजिए और साथ साथ आप भी मसाला चाय का एंजॉय कीजिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

इस साल के मॉनसून को लेकर प्रेडिक्शन आ गया है और मॉनसून ऑलमोस्ट दस्तक दे चुका है। नॉक नॉक, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड मॉनसून का इंतजार हम सभी लोगों को रहता है। देखो, मॉनसून से फसल भी अच्छी होती है। काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो मॉनसून पर निर्भर रहते हैं, मॉनसून की बारिश पर निर्भर रहते हैं, और इस बार मॉनसून के दौरान थोड़ी सी कम बारिश होगी। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस बार सुपर एल नीनो होने वाला है, यानी कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और कुछ मौसम विभाग वालों का कहना है कि इस साल नॉर्थ इंडिया में, यानी कि दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड और इन सब एरिया के ऊपर 2400 किलोमीटर का बड़ा लंबा वाला एरिया, बहुत ज़्यादा, मतलब 2400 किलोमीटर समझ रहे हो ना आप लोग, ये इंडिया भी इसमें कवर हो रहा है, चाइना भी इसमें कवर हो रहा है, नेपाल भी इसमें कवर हो रहा है, और बहुत सारे एरियाज इसमें कवर हो रहे हैं जहाँ पर इस साल बारिश ज़्यादा हो सकती है। बट यहाँ पर मॉनसून की अगर बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि मॉनसून इस बार औसतन 100% होती है, तो 90% होगी इस बार, और कह रहे हैं अगर कम से कम हुई तो 60% भी हो सकती है। तो मॉनसून अगर कम हुआ तो हम सभी जानते हैं कि क्या होगा, गर्मी बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग बस प्रे करेंगे कि मॉनसून थोड़ा सा अच्छा रहे और बारिश होती रहे, क्योंकि ये गर्मी तो झेली नहीं जा रही बॉस। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एबी डिलो की आवाज में ही ये गाना, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ हटके।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

जब भी कोई खुशी की बात हम लोगों को पता चलती है तो हम लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, हम लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। जस्ट इमेजिन कि आप लोग अपने घर पे बैठे हो, आप लोग किसी स्पोर्ट में हो और आपका नाम टीवी पे आता है और आप क्या करोगे, खुश हो जाओगे ना। तो ऐसा ही हुआ अभी रिसेंटली, जहां पर एक ब्राजीलियन फुटबॉलर जो कि गोलकीपर था और वो वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्ट हो गया, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की टीम में। जैसे ही उनका नाम आया टीवी पर तो वो इतना खुश हुए कि वो बेहोश होकर अपने सोफे पे गिरे और फैमिली वालों को लगा कि वो बंदा खुशी के मारे अपना सब कुछ भूल के सोफे पे गिरा है और फैमिली वाले उसके ऊपर जंप कर करके चिल्ला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद पता चला अरे ये तो बेहोश हो चुका है। तो फिर उसको उठाया गया, होश में लाया गया, ऑल दो उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक थी, बट ये खुशी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। एंड अभी उसका सिलेक्शन हो चुका है और आपको बता दूँ इस बार भी टीम इंडिया नहीं खेल पाएगी फीफा वर्ल्ड कप, बट हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्रिकेट इज नॉट द ओनली स्पोर्ट, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और ये फीफा भी एक दिन टीम इंडिया के नाम जरूर आएगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, बाहर आइए गाना ओनली ऑन 89.6 FM, कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात करते हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन

ऑल्दो कल का मैच सभी ने देख लिया होगा, बट स्टिल मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जैसे कि मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, बट कोई नहीं, चलता है इतना तो। खैर, अभी मैं बात करना चाहता हूँ कल के मैच के बारे में, क्योंकि कल RCB ने कप दूसरी बार अपने नाम कर लिया है। और मैं बोलूँगा सबको क्रेडिट इक्वली जाता है। लोग विराट कोहली को क्रेडिट दे रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, बट क्रेडिट सबको इक्वली जाएगा, क्योंकि विराट कोहली ने नाबाद पारी खेली है। इसके अलावा रजत पाटीदार हैं, इनके अलावा भुवनेश्वर कुमार हैं। ऑल्दो सारे ही खिलाड़ी अमेजिंग थे, सब ने अच्छी बॉलिंग करी, सब ने अच्छी बैटिंग करी और मिलकर ये कप लेकर आ गए। बट अब क्या, मतलब अब आगे क्या, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, शाम को मैच तो है नहीं देखने के लिए। तो मुझे लगता है हम लोगों को आज से न्यूज़ चैनल ही देखने पड़ेंगे, और बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जो कि हम लोग शाम को टाइम पास के लिए देख लेते हैं। बट एक और चीज़ मैं बोलूँगा आप सभी से कि आने वाली 4 तारीख को एक ऐसी मूवी आ रही है जिसके बाद आप लोग एक दो दिन तक देख ही सकते हो उसको। कौन सी है वो मूवी, करेंगे उसके बारे में बात। मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, मिक्स मैशअप ही गाना। मैं ज़रा गर्म पानी भी कहता हूँ, बस बाहर गया, यूँ गया और यूँ आया। Take it to the top.

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो तुम सारा होगा कोई।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। गाना ये वो वाला था जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ, फिर उसके बाद सभी के जुबान पे चढ़ गया। और मैं अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया पे एक ऐसी फिल्म के सारे डायलॉग्स आ गए थे, वही फिल्म रिलीज होने जा रही है 4 तारीख को। घर की याद नहीं आई तो जैसी एक्चुअली मैं हॉटस्टार पे आ रही है मूवी धुरंधर 2। अगर आपने अभी तक ये धुरंधर 2 मूवी नहीं देखी है तो अब मौका है आप लोगों के पास कि 4 तारीख को यानी कि थर्सडे की शाम को आप बैठ के अपने फैमिली वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठ के आराम से मूवी देख सकते हो। और वैसे भी थर्सडे को जानबूझ के रिलीज़ कर रहे हैं, प्री रिलीज़ है, मीन्स थर्सडे की शाम को रिलीज़ होगी, एक्चुअली में फ्राइडे को होनी थी, बट ठीक है एक दिन पहले निकाल रहे हैं मूवी ताकि आप लोग आराम से देख सको। और वो भी सिर्फ प्लस मेंबर्स के लिए है, और जिनके पास नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है हॉटस्टार का वो 5 तारीख को ये मूवी देख सकते हैं। फिर आप भी गली गली में घूमते फिरते बोल सकते हो कि घर की याद नहीं आई तो जैसी। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। अभी वापस आकर मैं बात करना चाहता हूँ उस लड़के की जिसने धमाल मचा दिया सबके टीवी स्क्रीन पर, यानी कि बहुत सारे अवार्ड अपने साथ लेके गया है। कौन से अवार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ IPL की, और मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की। करेंगे उसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: एक ऐसा नाम लूंगा जिसने सबके टेलीविजन स्क्रीन पर धमाल मचा दिया, और उस खिलाड़ी का नाम है
1: क्या?
0: वैभव सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड ये पापी गले का क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे बात कर रहा हूं आप लोगों से। खैर, मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी की इसलिए भी क्योंकि उस लड़के ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। दुनिया भर के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को पछाड़ दिया है इस लड़के ने। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 15 साल का है ये खिलाड़ी, बट 440 गेंदों में 1000 IPL रन बनाए हैं, 521 रन बनाए हैं पावर प्ले में। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो भी इसी साल के IPL की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा 15 साल का ये खिलाड़ी है, और 15 साल 2 महीने करीब करीब इतने ही हुआ इसको, और एक IPL प्लेऑफ में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला खिलाड़ी भी ये बन चुका है। 19 छक्के मारे थे, और इसके अलावा एक T20I सीरीज में सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज मारी है, यानी कि 125 बाउंड्रीज मारी है इस लड़के ने। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं मात्र 15 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने। और मुझे ऐसा लगता है, देखो यार, ये खिलाड़ी जितना भी अच्छा खेले और आने वाले टाइम में ना ये और भी अच्छा खेलने लग जाएगा, क्योंकि अभी अगर 15 साल की उम्र में इतने लंबे छक्के मार रहा है तो सोचो ज़रा कि जब क्रिस गेल के बराबर हो जाएगा तब कितने लंबे लंबे छक्के मारेगा। बस यही चीज़ अभी बोलना चाह रहा था। और इसी के साथ साथ एक और बात बता दूं आपको कि इस साल IPL 2026 में किसने कौन सा अवार्ड जीता है, करेंगे इसके बारे में बात। इसमें भी वैभव सूर्यवंशी का नाम है, मगर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूं। मैं रेगुलरली गर्म पानी पीता रहूंगा आज, क्योंकि गला ही खराब पड़ा है मेरा। Right.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

मोहम्मद सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

ये गाना ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आईपीएल 2026 पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इस बार भी आईपीएल में किसने कौन सा अवार्ड जीता होगा सोचो जरा। और इसमें एक नाम सबसे ज्यादा उभर के सामने आया है और वो है वैभव सूर्यवंशी का, जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप होल्डर 776 रन बनाए ऑरेंज कैप मिली है इन्हें। और जबकि अगर बात करें गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस का जो एक तेज गेंदबाज है जिसका नाम है कगिसो रबाडा, उन्होंने पर्पल कैप जीती है, टोटल 29 विकेट्स ली है। बट अभी वैभव सूर्यवंशी की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इसने टॉप 3 अवार्ड जीते हैं। 10 लाख रुपए मिले इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के नाम पे, 10 लाख रुपए और मिले सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन के नाम पे, फिर उसके बाद एक गाड़ी भी मिली सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के नाम पर। तो ये तीन तो इसके नाम पर हो गए। मगर अगर मैं बात करूँ गुजरात के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसका नाम है मोहम्मद सिराज, उनको मिला है ग्रीन डॉट बॉल्स ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा ग्रीन बॉल मीन्स फ्री बॉल जिसमें कोई भी रन नहीं पड़ा है, डॉट बॉल जैसे हम लोग कहते हैं, तो वो डाली है मोहम्मद सिराज ने। तो ये तो था जी आंकड़ा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं फेयर प्ले अवार्ड्स की, तो वो मिला है पंजाब किंग्स को और कैच ऑफ द सीजन मिला है हमारे कोलकाता के खिलाड़ी मनीष पांडे को। तो ये तो थे जी सारे के सारे अवार्ड्स। और इसके अलावा भी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए क्योंकि गाने और बातें तो चलती रहेंगी मेरे दोस्त।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

आज दोपहर के टाइम पे जब हल्के फुल्के बादल आए थे ना, आई वॉज लाइक चलो फिर से आज बारिश हो जाएगी तो ठंडा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। कह दूं तुम्हें, अभी आप सोच रहे होगे गौरव तेरा गला खराब है फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है। हाँ ठीक है, गला तो खराब चलता ही है बट ठीक भी हो जाएगा टाइम के साथ। खैर, जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मौसम में थोड़ा सा बदलाव अब देखने को मिलने वाला है, यानी कि फिर से गर्मी बढ़ती चली जाएगी। जहाँ दोपहर में टेम्परेचर 32 से 33 डिग्री था, मगर जो गूगल पे आता ना फील्स लाइक 36 डिग्री, तो ऐसा ही हो रखा था। लग रहा था कि 36-37 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, बट ऐसा कुछ था नहीं। और खैर, मैं अगर बात करूं आने वाले दिनों की, तो आने वाले दिनों में आपको 9 से 10 जून तक 42-43-44 डिग्री भी देखने को फिर से मिल सकता है। तो मैं कहूँगा यात्रीगण, कृपया ध्यान दीजिए, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपनी तबीयत का ध्यान भी रख लीजिए, क्योंकि 2-3 दिन की ठंडी भी तो खैर क्या ही थी, वो ठीक था, मौसम ठीक हो गया था, बट अब फिर से गर्मी बढ़ने वाली है। और मैं तो बस यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी बीच बीच में बौछार आते रहे, ताकि ये जो मौसम है ना, गर्मी की मार जो है ये हमें ना सहनी पड़े। देखो, वी आर प्रिविलेज्ड कि हम लोगों के पास एसी, हम लोगों के पास कूलर है। सोचिए उनके बारे में जो सड़क किनारे सोते हैं। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए AI वर्जन वाला गाना ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

पर गहरे कानेड़े डीप कोने मेरे कमरे में डंगा डंगा क्लीन एंड नीट कोने मैं रात न सुननी बीटे मेरे दुर लीड कोने आम जीओडी आना करे मेरा पीक कोने स्प्लेंडर पे बैठ जगोरी मेरे दुर जीप कोने।

0: जब से बड़खल लेक में पानी भरा है तब से आप एक बार भी गए हो क्या वहाँ पे? और अगर जाके देखोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा पानी के ऊपर वो बहुत सारी वो जंगली वाली घास होती है ना, वो उग गई है। और इस घास की सबसे बेकार बात बताऊं क्या है कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करती जाती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा, अगर कल को सरकार पूरा एक इनिशिएटिव लेके पूरी की पूरी बड़खल झील साफ हो जाएगी तो भी मेरे ख्याल से ये जल्दी से फिर से उग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसका एक सिंगल जड़ भी वहां पर रह गया तो इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ। बहुत तेजी से फैलती है ये जो भी चीज इसके ऊपर उगी हुई है, और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, तो करेंगे किसी दिन इसके बारे में बात। मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी से मुझे दीजिए इजाजत, मैं निकलता हूँ यहाँ से, मिलूंगा आप सभी से फिर से दोबारा सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8, यानी कि कल मिलूंगा यार, आज तो सोमवार ही है। खैर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर गाना सुनिए, वापस आएगी गीत वैदेश की बाजियां। मगर उससे पहले आप सभी के लिए अच्छा सा गाना चलाना तो बनता है ना, तो दिलजीत दोसांझ की आवाज में आप सभी के लिए ये प्यारा सा गाना कुफर, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ हटके
1: mixing in the house.

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, घर का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

अभी जो गाना आपने सुना है, गाने का नाम है खत, नवजोत आहूजा की आवाज में है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधा दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने सबसे सच्चे जज्ब छुपा कर रखते हैं। खत आज के दौर में शायद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन कभी खत लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता था, वो किसी को अपना वक्त देना होता था, अपना दिल कागज पर उतार देना होता था। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है, यादें, बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ लिखना चाहा है? ये सवाल है आपसे। ऐसा कुछ जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहा, एक खत जो कभी भेजा नहीं गया क्योंकि डर था कि अगर वो पढ़ लिया गया तो शायद सब बदल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा गया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। इश्क में ना सबसे मुश्किल यही होता है कह देना, क्योंकि जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में मैं उन्हीं एहसासों के बारे में बात करूंगी जो कहीं नहीं गए लेकिन महसूस हुए हैं। मैं हूं गीत और ये है इश्क बाजियां। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में एक गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं। और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या आखिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी। और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूं तो किससे कहूं, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन दिल अभी भी उसके ख्याल में अटका हुआ है। सुबह भी वही है, शाम भी वही है, बस वो इंसान बदल गया है। और शायद यही इश्क की सबसे खामोश सच्चाई है, इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूं गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्प्ररी होते हैं। इसी आज के कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिया। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन, और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ही आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। दिस इज सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती हैं। और जैसे वो हमसे दूर जाता है, सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार। और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमैच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है। और शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम, और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड, बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक। और फिर शायद शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है, लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम खुद को अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं, क्योंकि सच ये है कभी कभी हम

0: इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है, हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है, और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है, टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, और कोई बहुत पीछे रह जाता है, और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूँ गीता, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे।
1: देखो

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजियां में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आरडी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहाँ किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है, इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
1: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत। जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में, जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल। शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजू की दिल दिया गल्ला।

गाना बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ऐ दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दियां गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाए, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया। और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखाई गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता यह है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है या क्या फीलिंग है, तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत और गाना है अरिजीत सिंह की।

0: ए भाई दरा देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज़ हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री रामसुख दास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं, जोई जोई प्यारो करें

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

मोह सिंधु की दारा, काढ़ दया कर कर मुही पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हो अति दीन महा दुख पावत, लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुंह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कि कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब रसना थकी न बोले हो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज्यादा सही निर्णय कोई नहीं है। लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है, अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है। अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते। ये जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम, शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूड मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा। क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है।